लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना जिंदगी फिल्म से। 1964 रिलीज ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। नवजीवन नव सुबह का शुभ आरंभ, सुहानी भोर का पदार्पण, दूर कहीं से आ रही मुरली की आवाज, ऐसा सुंदर संयोग और उस भोर को और भी सुहाना बना देता है।

सुरैया की आवाज से सजी ये रचना दिल लगी फिल्म से अभी आपने सुनी। 1949 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। नौशाद का संगीत था, शकील बदायूं की लिखी रचना।

किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत मशाल फिल्म से अभी आपने सुना। 1984 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था, जावेद अख्तर की लिखी रचना। आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये गीत।

आशा भोसले की आवाज़ से सजा ये गीत पगला कहीं का इस फिल्म से अभी आपने सुना। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के

0: हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in protests over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. As per the official statement, persons arrested on detained in connection with cases filed prior to the deadline will be released immediately. The government also guaranteed that no future direct or indirect action will be taken regarding incidents before the cut-off time. Assam's Home and Political Department also informed that cases had been registered in Assam in connection with the protests resulting in the

0: Highlights. Commonwealth Games highlights.
1: Glasgow. The Commonwealth Games.
2: नमस्कार। ग्लासगो की ठंडी फिजाओं में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ और बुलंद होता जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पांचवे दिन भारत के खाते में आए 6 पदक। ये पदक सिर्फ पदक नहीं बल्कि 4 साल की कड़ी मेहनत, पसीने और त्याग की कमाई है। हालांकि कई मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला, लेकिन उनके जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। 5 दिनों का ये सफर बता रहा है कि भारतीय दल अभी थमा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में पदकों की चमक को बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है।
3: मजबूत टखने, पैरों में लोहे सी मांसपेशियां, कंधों पर बोझ संभाल लेने की अद्भुत ताकत और गजब का भुजबल, ये होती है पहचान वेटलिफ्टिंग की, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस देश को इन खेलों के पहले तक 46 स्वर्ण पदक सहित कुल 133 पदक दिलाए थे और ये संख्या इन खेलों में भी बढ़ती ही जा रही है। और कल से ही आरंभ हो गई वो स्पर्धाएं जो किसी भी मल्टी डिसिप्लिनरी खेल उत्सव की सबसे रंगारंग, सबसे ग्लैमरस और सबसे रोमांचक स्पर्धाएं होती हैं। एथलेटिक्स खेलों की रानी कहते हैं इसे, और जिस तरह से भारत एथलेटिक्स की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, उम्मीदें भी जवान होती ही जा रही हैं। कल किन भारतीय पंखों को परवाज मिली, कौन बिजली की तरह कौंधे, कौन उम्मीदों के बोझ में दब गए, कहां मायूसी मिली और कहां अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संतोष

0: भले ही पदक में न बदला हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पांचवें दिन का पूरा लेखा जोखा।
1: कॉमनवेल्थ खेलों का पांचवा दिन भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर्स के नाम रहा, जहां ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं को 53 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक दिलवाया। ज्ञानेश्वरी यादव ने 88 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी का मुकाबला नाइजीरिया की दिग्गज खिलाड़ी ओनेमो ओमुलोला डिडेही के साथ था, जिन्होंने 206 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रिकॉर्ड स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 22 वर्षीय ज्ञानेश्वरी ने शारीरिक दर्द से जूझते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने अंतिम और तीसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन उठाकर पोडियम पर दूसरा स्थान पक्का किया।
2: मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं। मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ।
1: उनकी इस जीत पर छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजेश झंगिया जी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा,
3: बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है ज्ञानेश्वरी यादव, जो उनके पापा जो हैं दीपक यादव जी एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है। हमारे आदरणीय सर थे, उन्होंने कुछ अपना फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करते करते उनको उसी योगदान देते हुए इस मुकाम पे पहुंचाया। पहले छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए, फिर नेशनल में, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो पार्टिसिपेट करे, उसका पूरा श्रेय वहाँ के लोगों का और हमारे बड़ों का आशीर्वाद से वो आज इस रिजल्ट पहुँचाई है सर।
1: वेट लिफ्टिंग में पदकों का सिलसिला यही नहीं रुका। ज्ञानेश्वरी यादव के बाद बारी आई बिंदिया रानी देवी की, जिन्होंने महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। बिंदिया रानी ने कुल 199 किलो वजन उठाकर भारत को इन खेलों का छठा पदक दिलवाया। बिंदिया ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक पक्का कर लिया। इस स्पर्धा में नाइजीरिया की राफियातू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मणिपुर की रहने वाली बिंदिया रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा पदक जीता है। हालांकि पिछले खेलों की तुलना में इस बार उन्होंने 55 किलोग्राम से बढ़कर 58 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश की थी, जो कि शारीरिक और तकनीकी रूप से एक बड़ा बदलाव था। देर रात हुए मेंस 79 केजी में भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने केवल वजन ही नहीं उठाया, बल्कि पूरे भारतवासियों की आशाओं और जिम्मेदारियों का भार भी अपने कंधों पर संभाल कर रखा। वल्लूरी अजय बाबू ने स्नैच में 149 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 330 केजी वजन के साथ पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया। अजय बाबू ने गोल्ड मेडल से सिर्फ 1 किलोग्राम वजन से चूक जाने के बावजूद स्नैच में 149 किलोग्राम का गेम्स रिकॉर्ड बनाकर सिल्वर मेडल हासिल किया।
0: स्पर्धाओं की रानी क्वीन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की शुरुआत कल हो गई। भारतीय दल में सबसे ज्यादा ट्रैक और फील्ड के एथलीट ही हैं, 22 पुरुष और 10 महिलाएं, कुल मिलाकर 32 एथलीट। विश्व प्रसिद्ध और भारत की आंख के तारे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उनके साथी रोहित यादव, तेजेंद्र पाल सिंह तूर, तेजस्वी शंकर, मुरली श्री शंकर, सर्वेश कुसारे जैसे सितारों से सजा हुआ दल, कल पहला दिन था और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, क्योंकि भारोत्तोलन के सिवा अगर कोई और पदक आया वो आया एथलेटिक्स में। सर्वेश कुसरे ने ऊंची कूद में रजत पदक कमाया। वो तो बस थोड़ा सा किस्मत उनकी खराब थी या किस्मत का फेर था कि वे स्वर्ण पदक नहीं पा सके तकनीकी कारण की वजह से, क्योंकि उन्होंने अधिक अटेम्प्ट लिए थे उस ऊंचाई को पार करने में। बहुत कमाल की ऊंची कूद फांदी कल उन्होंने। पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के तीन तीन एथलीट थे, आदर्श राम ज्योति शंकर, सर्वेश कुसरे जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 2.30 मीटर तक पार किया है, दुनिया में नंबर 4 के स्थान पर पहुंच चुके हैं, और तीसरे भारतीय थे तेजस्विन शंकर, मशहूर डेकाथलीट और हाई जंपर। लेकिन तेजस्विन फील्ड में नहीं उतरे, रिटायर हो गए क्योंकि उनको चोट लग गई थी। आदर्श और सर्वेश दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी शुरुआत की और 2.1 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ही लोग पदक की होड़ में बने हुए थे और पहले 5 स्थानों में थे। सर्वेश तो आगे बढ़ते चले गए और पहुंच गए टॉप 3 के मुकाबले में, और उसमें भी जब किमानी जैक बाहर हो गए इंग्लैंड के, तो वो 2.25 मीटर की जब ऊंचाई पर बार सेट किया गया तो उन्होंने उसको भी तीसरे प्रयास में पार कर लिया। इसके बाद 2.28 सर्वेश और

जमैका के रोमेश बेकफोर्ड दोनों ही पार नहीं कर पाए, यानी 2.25 मीटर पर बराबर रहे, लेकिन चूंकि अधिक प्रयास लगाने पड़े थे सर्वेस को, अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने पार किया था, इसके चलते उनको मिला रजत पदक और स्वर्ण पदक गया जमैका के पास। जब दिन की शुरुआत हुई तो जो पहली स्पर्धा थी वही किसी झटके से कम नहीं थे। भारत के गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर की हीट्स में उतरे। 100 मीटर सबसे आकर्षक स्पर्धा होती है जो खेलों के सबसे तेज धावक का निर्णय करती है। एथलीट्स का हुजूम था, 11 हीट्स 88 प्रतियोगी। हीट नंबर 4 में गुरिंदर, और गुरिंदर भारत के सबसे तेज धावक हैं इस समय। अपनी हीट में गुरिंदर जमैका के रोहन वॉटसन के पीछे रहे, दूसरे स्थान पर आए, लेकिन जब पूरा देखा गया मिलाकर तो वो आए 20वें स्थान पर, जबकि क्वालिफाई किया

0: लाकर तो वो आए 20वें स्थान पर, जबकि क्वालिफाई किया 17 लोगों ने। फिर आया समय मुरली श्रीशंकर का, जो निसंदेह देश के सबसे अच्छे लॉन्ग जंपर है। उन्होंने उम्मीदें जवान रखी इस देश के खेल प्रेमियों की। अपने पहले प्रयास में ही क्वालिफिकेशन मार्क 8 मीटर पार कर लिया, 8.01 मीटर की दूरी फलांग कर। मुरली अब पदक की दूरी लांघने के लिए उतरेंगे कल रात और भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होंगे।
1: Hopefully I have to redeem my silver medals from last Commonwealth Games.
0: लॉन्ग जंप में ही भारत के एक और एथलीट थे लोकेश सत्यनाथन, वो बहुत रंग में नहीं दिखे। इस सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ 8.21 मीटर निकालने वाले लोकेश 7.77 मीटर ही कूद सके।
2: I finished fourth in my group and it was a big, two big jumps in the last and it was a scratch.
0: पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स के सुबह हुए राउंड एक के मुकाबले में हीट वन में तेजस अशोक शिरसे ने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन देर रात हुए फाइनल मुकाबले में वो सबसे पीछे स्थान पर आ पाए।
3: एथलेटिक्स के बाद बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की, जहां कल का दिन रहा भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम। एक ही गेम, एक ही कैटेगरी, और वो पल जिसमें दो स्थान आए भारतीय महिलाओं के नाम। जी हां, भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को इस संस्करण का दूसरा गोल्ड मेडल दिलवा दिया। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा ने 7.26 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के राकेश भाई भट्ट ने पुरुषों की 100 मीटर T38 फाइनल स्पर्धा में 11.82 सेकंड का समय निकालते हुए पांचवा स्थान हासिल किया। वहीं श्रेयांश त्रिवेदी ने 12.22 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर अपनी दौड़ समाप्त की।
0: इस बार भी मुक्केबाजों ने उम्मीदों को भरपूर हवा दे रखी है। अब तक जितने भी बॉक्सर जितनी बार रिंग में उतरे हैं, 2 बार के सिवाय रेफरी ने हर बार उनका हाथ ऊंचा ही उठाया है, लेकिन एक बार जब ऊंचा नहीं उठा वो कल भी था। कल 4 भार वर्गों में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले थे और 3 भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले जीतकर पदक पक्का करने से बस एक बाउट दूर ही रह गए हैं। सबसे पहले रेड कॉर्नर में सचिन सिवाच ने तीसरे राउंड में बेहतरीन मुक्केबाजी कर अंकों के आधार पर 4-1 से इंग्लैंड के विलियम हेविट को परास्त किया।
4: The winner in the red corner, Sachin Sivaj. तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है गोल्ड लिया ने।
0: और इसके बाद 80 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में अंकुश ने जबरदस्त पंचेस और जैब्स के साथ साथ बेहतरीन रक्षण करते हुए 5-0 के एक मत से फाइट अपने पक्ष में कर ली।
5: यूनानिमस डिसीजन, द विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया।
0: दिन की एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज साक्षी भला क्यों पीछे रहती महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में। पूरी चपलता के साथ रिंग को कवर करते हुए मुक्कों की बौछार कर दी उन्होंने और बोत्सवाना की लियाबो मुडुकांडे को उनको बिल्कुल बेबस कर दिया। 5-0 से सर्वसम्मति के साथ निर्णय उनके पक्ष में रहा और साक्षी अब पदक की साक्षी बनने के बहुत नजदीक पहुंच गई हैं।
6: मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मैं उम्मीद करती हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत।
0: दिन की अंतिम बाउट थी 70 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित की नॉर्दर्न आयरलैंड के जॉन मैकेलेन के साथ और सुमित ये मुकाबला अंकों के आधार पर हार बैठे।
3: चलिए अब आपको लिए चलते हैं फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी के खेल जिम्नास्टिक में, जहां आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिला वर्ल्ड फाइनल में प्रतिष्ठा सामंता 7वें स्थान पर रही।
0: तैराकी में राष्ट्रमंडल खेलों में स्पर्धा खासी तगड़ी होती है। ऑस्ट्रेलिया तो हावी रहता ही है, लेकिन कनाडा, इंग्लैंड आदि भी बहुत कड़ी चुनौती पेश करते हैं। भारत के पुराने सीजनड पुरोधा साजन प्रकाश कल तरणताल में उतरे। 200 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने क्वालिफाई किया और तीनों हीट्स में कुल मिलाकर वे 6ठे स्थान पर रहे और फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल बहुत देर रात 2 बजे हुआ। वहां पर साजन प्रकाश अपनी ख्यात के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे और पदक की होड़ से बाहर हो गए।
3: आइए सौरभ झा ने पैरा

0: स्विमिंग में भारत का हाल। देर रात हुए फाइनल में स्वातिक पाटिल ने पांचवा स्थान हासिल किया। स्वातिक ने फाइनल में 1:15.82 का समय निकाला। इस कैटेगरी में स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया, रजत न्यूजीलैंड और ब्रॉन्ज भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की झोली में गया। कर्नाटक के रहने वाले स्वातिक ने इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहद कड़ा मुकाबला पेश किया। हालांकि वो पदक तालिका में स्थान बनाने से चूक गए, लेकिन पांचवें स्थान पर फिनिश उनके खेल के कौशल को दर्शा गया।
1: Involves India's Putul Sonowal's Commonwealth Game 2026 campaign comes to an end after a loss against Kenya's Anwar Hamada. Despite a determined effort, Putul went down 0.5 to 1.5. He trailed 6-8 in his first set, and in second set, he regained his composure and bounced back with good throws and leveled second set 5-5. But it was not too little and too late, and he missed out on a place in the semi-finals. The Indian bowler finished with 2 wins and 3 losses, defeating Canada and Falkland Islands while losing to Malaysia, Malta and Kenya during his campaign. He finished 5th in his section and could not qualify for the semi-finals.
0: अब बात आती है 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल की, जहां भारतीय महिला टीम रीना, लक्ष्मी, मीनाक्षी, ऋतु पूल बी के तीसरे मैच में नाइजीरिया से 6-7 से हारकर बाहर हो गई।
2: और आइए अब एक संक्षिप्त निगाह डालते हैं आज होने वाली स्पर्धाओं में। वेटलिफ्टिंग, जिसमें अब तक बहुत पदक आए हैं, उसमें 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा सेराम और 69 किलोग्राम में हरजिंदर कौर अपने बाजुओं का दम आजमाएंगी। एथलेटिक्स में 400 मीटर की स्पर्धा है पुरुषों की, महिलाओं में ऊंची कूद में पूजा होंगी, 10,000 मीटर में कुलवीर सिंह होंगे। बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति, 60 किलो में प्रिया, 65 किलोग्राम में परवीन और पुरुषों में जादूमणि सिंह, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया, ये सब आजमाएंगे अपने मुक्कों की ताकत।
0: राष्ट्रमंडल खेलों की इस अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए संपादक स्वाति कपूर, प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं कविता शर्मा अपने सहयोगी अनुपम पाठक के साथ लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।
3: The Commonwealth Games.
4: ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026 హైలైట్స్.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद। FM Rainbow 101.9.

वेल नमस्कार, गुड मॉर्निंग. यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत. ये है नमस्ते हेलो आदाब का दूसरा सेगमेंट, एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है मुझ में थोड़ी एनर्जी और बढ़ती जा रही है, बिकॉज येस मॉर्निंग आवर्स आर एक्चुअली नॉट फॉर मी. आई रियली रियली कैन नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, एंड आई थिंक स्लोली नाउ आई एम वेकिंग अप. बट येस, जब तक कि आप लोगों से बात करने का टाइम आएगा तब तक कि मैं पूरी जाग चुकी होंगी. अभी भी खैर नींद में शो नहीं कर रही हूँ, बट येस आई वुड स्टिल लव कि अगर यू नो यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा लगता है, लाइक ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द एसी एंड ऑल, द वाइब इज़ सो गुड. अगर यहाँ पे एक पिलो और एक ब्लैंकेट होता तो ट्रस्ट मी इतना शांत माहौल है, इट्स जस्ट चार दीवारें एंड मी, कि मैं मस्त यहाँ पर सो रही होती. लाइक यू नो जस्ट एक ब्लैंकेट की ज़रूरत है. सो आई गेट टू कम्फर्टेबल हेयर, दिस इज़ माई हैप्पी जोन वेर एन एनी बडी कैन एक्चुअली कम एंड स्लीप. नो आई इट्स नॉट एन इन्विटेशन, बट येस इतना प्यारा माहौल है रूम का, ठंडा ठंडा कोजी सा, दैट एनी बडी वुड लव टू स्लीप हियर. वेल वी वर टॉकिंग अबाउट अलॉट मैनी थिंग्स टूडे, एंड स्लीपिंग इज डेफिनेटली नॉट वन अमंग दैम. बट बिफोर वी स्टार्ट आई हैव अ ब्यूटिफुल मैसेज. मैसेज भेजते हैं बसवंत जी शांति नगर मासब टैंक से. कहते हैं कोयल जी, प्रीत जी नमस्ते सर, बड़े दिनों के बाद कोयल वाली बात सुनी है, बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ के. कहते हैं रेनबो के लिसनर्स को नमस्ते जी, आपको भी नमस्कार, एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग विथ ऑसम वॉइस मेकिंग हैदराबादीज हैप्पी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. वी आर लिसनिंग कोयल की आवाज़, आप आते रहो ना और प्ले ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. क्या बात है भाई, आपने तो राइम करते करते बड़ी ही प्यारी लाइन लिख दी, इट्स एक्चुअली राइमिंग. आगे कहते हैं सच्चे और शुभचिंतक लोग हमारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं. सच्चे और शुभचिंतक लोग हमारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं, जो चमकते तो सदैव रहते हैं लेकिन दिखाई तभी देते हैं जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है. बिल्कुल सही. एक्चुअली आप देखिएगा जो डायमंड है ना वो हर बार चमकता है, लेकिन उसकी चमक और भी ज़्यादा अच्छी होती है जब उसे अंधेरा कर दिया जाए, राइट? या कई बार लाइट भी रिफ्लेक्ट करने पर, लाइट भी पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि भाई जितने भी आपके करीबी लोग हैं, जो आपके एक्चुअली शुभचिंतक है, योर वेल विशर्स, जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, वो आपके अच्छे मौक़ों पे आपके साथ रहें ना रहें, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो आपके बुरे मौके में ना हो. तो बुरे मौके पर जो आपके काम आए वही आपका सच्चा और अच्छा मित्र होता है, वही आपका शुभचिंतक होता है. और ऐसे लोगों को हमेशा चमकते रहने देना चाहिए भाई. लाइक आई सेड, वी शुड नेवर स्टॉप टॉकिंग टू आर लव्ड वंस. जैसे ही मैंने शो स्टार्ट किया था, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड द शो, कि हमें अपने लोगों से कभी भी बात बंद नहीं करना चाहिए. छोटी छोटी बातों पे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया. यार सब सबके मूड स्विंग्स होते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है. यू नेवर नो कि सामने वाला किस वक्त किस चीज़ से गुजर रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है. माफ़ करना सीखिए, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खुशी वाली है. खुशियाँ बांटते चलिए, छोटे मोटे में मुंह मत बनाइए बिल्कुल भी. मुंह बनाने से एक मूवी याद आ रही है जिसका बहुत ही प्यारा गाना है, मस्ती मूवी है जिसका गाना है दिल दे दिया है. इसमें बीविया जो है थोड़ा सा मुंह बना लेती है बिकॉज ऑफ द हरकतें ऑफ द हस्बैंड्स. आई एम श्योर अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो यू वुड बी एबल टू रिलेट टू इट, बट सच अ ब्यूटी

0: वेल, संगमरमर के मीनारे सुन रही है या नहीं सुन रही है वो तो मुझे नहीं पता, बट यू नो आपकी बॉडी है वो आपको ज़रूर सुनती है। आई एम गोइंग टू टेल यू अ कपल ऑफ टेक्निक्स जिससे आप एक्चुअली बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। दैट विल डू राइट आफ्टर स्मॉल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विथ मी, दिस इज़ नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत। Time for a small break.
1: కాస్త వినండి, మీ ముఖ్యమైన పనుల మధ్య మరొక ముఖ్యమైన పనిని మర్చిపోకండి.
2: 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఏ పన్ను చెల్లింపుదారులైతే తమ ఆదాయ పన్ను రిటర్న్ ITR 1 లేదా ITR 2 ఫార్మాట్ లో దాఖలు చేయవలసి ఉందో వారు రిటర్న్లను దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ జూలై 31, 2026.
1: రిటర్న్ దాఖలు చేసే ముందు మీ AIS మరియు ఫామ్ 26AS లను జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేసి మీ విదేశీ ఆదాయం లేదా విదేశీ ఆస్తులకు సంబంధించిన సరైన మరియు పూర్తి వివరాలను అందించండి.
2: మీ ఆదాయ పన్ను రిటర్న్ లో సరైన మరియు ఖచ్చితమైన సమాచారం నింపండి. అది క్విక్ రిఫండ్ లో సహాయపడుతుంది. సరైన రిటర్న్ అంటే సత్వర రిఫండ్.
1: ప్రతి పన్ను చెల్లింపుదారు ఒక జాతి నిర్మాత. ఆదాయ పన్ను విభాగం, భారత ప్రభుత్వం.
0: सो जापानीज़ लोग जो है, हम बात कर रहे थे कि ऐसी कुछ बातें जो कुछ सुने ना सुने आपकी बॉडी ज़रूर सुनती है। तो जापानीज़ जो हैं उनकी कुछ डिफरेंट आदतें हैं। दे हैव अ कपल ऑफ हैबिट्स जो शायद हमें लगेगा कि यार ये कैसी बातें हैं, लाइक यू नो वी माइट नॉट फाइंड इट रियली ग्रेट, बट ये डेफिनेटली काम करती है। कुछ चीज़ें मैंने खुद अपनाई हैं एंड कुछ चीज़ें इट्स जस्ट द सोर्स, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई एम जस्ट रीडिंग इट। ओके, सो अगर आपको लगता है आप अपनी एक्चुअली बॉडी से बात कर सकते हैं, आप अपने पेट से, अपने छाती से, अपने गले से बात करें, जैसे कि वो आपको सुन सकते हैं। वे उस तनाव को थामे रखते हैं जो आपके मन ने अभी तक पूरी तरह से संभाला नहीं है। तो अगर आपको लगता है आप थोड़े से भी स्ट्रेस्ड हैं तो आप अपने पेट से बात करें, अपने चेस्ट में जो भी अपन हैवी फीलिंग होती है ना, टॉक टू इट, अपने गले से बातें करें। इफ़ यू हैव सम पेन, जस्ट यू नो ट्राई टॉकिंग टू, जैसे कि आप किसी ह्यूमन बींग से बात कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। आपको लगता है कि अगर आपके मन ने अभी तक की पूरी तरह से इस पेन को नहीं संभाल पाया है, ट्राई टॉकिंग टू दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। इनफैक्ट आपको कभी भी दर्द हो रहा हो, चाहे सर दर्द हो, पेट दर्द हो, आप बात करके देखिए एंड सी इफ इट वर्क्स। एंड जैसे ही हम किसी चीज़ को छोड़ने वाले होते हैं, उसे पूरी तरह छोड़ने से पहले उसे थैंक यू ज़रूर बोले। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाना खाने गए हैं, हमें कोई वेटर सर्व कर रहा है, अब हम रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं, तो जिसने भी आपको सर्व किया आप उसे थैंक यू बोल के निकलते हैं। वैसे लाइफ में किसी भी चीज़ में आप अलविदा कहने से पहले कृतज्ञता शरीर को वर्षों तक खुला छोड़ने के बजाय दरवाज़ा बंद करने देती है। तो इट क्लोजेज एट यू नो क्लोज दैट पर्टिकुलर चैप्टर वंस फॉर ऑल, इस तरह से। एंड जो तेज पत्ता होता है, जिसे हम बे लीफ भी कहते हैं, आप अपनी उसमें इच्छा लिखकर, ये तो आजकल काफ़ी रील्स पे भी आ रहा है राइट, कि आप उस पर अपनी इच्छा लिखें और उसे जला दें। मुझे लगता है ये मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है। आग आती है, वायु आती है, हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, हमारी इच्छा समहाउ कम्युनिकेट करके उन तत्वों में मिलती है, एंड दैट्स हाउ आप उसे वास्तविक में महसूस कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू। और अगर आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपको लगता है कि यार दैट पर्सन इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी अलॉट, कई बार होता है ना लाइफ में, हम बहुत लोगों से मिलते हैं एंड वो लोग काफ़ी सैड हो जाते हैं लाइफ में, या इतना ज़्यादा नेगेटिविटी देते हैं कि आप नेगेटिव फील करने लगते हो, सो उसे अगर आपको अपनी बॉडी से लेट गो करना है, तो जैसे ही आप मिल के आए आप अपने हाथ धोएं एकदम ठंडे पानी से, और अगर हो सके तो उसमें सॉल्ट और ऐड कर लें, दैट वुड वर्क।

अगर आप अपने बेड के पास एक ग्लास पानी रखें और अपने दिमाग से एक प्रश्न पूछें, जब आप सोते हैं ना, तो आपका अवचेतन मन काम करता है इसे हल करने के लिए कुछ देर। सोते समय काम करता है ये काम। सो बेसिकली, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर हेड, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन फिल अ ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन आस्क इट अ क्वेश्चन, एंड दूसरे दिन आपको लगेगा कि आपके सारे प्रश्न का जवाब आपको अपने आप कहीं ना कहीं मिल रहा है। ट्राई दिस। आई हैव नेवर ट्राइड दिस, बट आई हैव हर्ड दिस अ लॉट मेनी टाइम्स। अपने भविष्य के स्वरूप से पूछे, जोर से पूछे कि आज आप मुझे क्या करने की आवश्यकता है। आपका मस्तिष्क बिना जाने ही उस दृष्टिकोण से निर्णय लेना शुरू कर देगा। सो यस, आप बिफोर यू ट्राई टू डू समथिंग, आस्क योर ब्रेन, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट मी टू डू टुडे, एंड मे बी यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर्स। ट्राई दिस। आईने में जोर से उस व्यक्ति से क्षमा मांगे जो आप थे। शर्म जो शरीर अभी भी रखती है उसे देखने की ज़रूरत है, और जो उसे देख सकता है वह आप है। एंड ये है इसका मीनिंग, कि आप अपने खुद के छोटे स्वरूप से क्षमा मांगें। आपको लगता होगा कभी ना कभी, यू नो, आपने कुछ अपने पास्ट लाइफ में अपने बचपन को आप माफ़ करना सीखें, या यू नो माफ़ी मांगे, माफ़ करना सीखने से ज़्यादा माफ़ी मांगे। एक कठिन क्षण के बाद 1 मिनट तक पीछे की ओर चले, अपने चलने का तरीका बदलें, और आप उस कहानी को बदल देंगे जो दिमाग अभी भी बता रही है। अगर यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, 1 मिनट तक के ट्राई टू वॉक इन द रिवर्स ऑर्डर एंड अपना तरीका बदल दें, अपनी वॉकिंग स्टाइल बदल दें। हो सकता है यू विल गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आप अपना नाम फुसफुसाएं। एक बड़े निर्णय से पहले अपना नाम फुसफुसाएं, मतलब धीरे से बोलना। जब आपका दिमाग आपका नाम सुनता है ना, तो वह अधिक ध्यान देता है, यह आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है। तो किसी भी काम से पहले आप अपना नाम धीरे से लें, एंड आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अपना नाम सुन के अपने आप अवेक हो जाएगा, एंड मे बी यू विल बी एबल टू अचीव द रिजल्ट्स फास्टर। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। यू नेवर नो कि किस तरह से ऐसी चीज़ें चेंज लेकर आती हैं, एंड आपके लिए लाइफ एकदम टर्निंग मोमेंट हो जाता है। चलते हैं हम अपने दूसरे गाने की तरफ, एंड गाना बहुत ही प्यारा है, लता जी किशोर जी की आवाज़ में, क्या यही प्यार है, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स अगेन। एंड आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, एंड मैं हूँ आपके साथ, आपकी प्रीत। ये तो हम 2000 से पहले भी पहुँच गए।

0: Rainbow 101.9.
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई.
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
2: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.
1: इट्स नॉट जस्ट फूड,
2: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन.
1: जश्न हैदराबाद.

0: Rainbow 101.9.
1: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి తేదీ ఆగస్టు 7. వివరాలను సమీపంలోని స్టడీ సెంటర్లో లేదా హెల్ప్ డెస్క్ 04023680333 లేదా 2360555 లో లేదా www.braou.ac.in లో పొందవచ్చు.
2: Well, इसी बीच हमें एक मैसेज आया है एंड मैसेज है, सपने वो नहीं जो सोने पर आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते, एंड अपने वो नहीं जो रोने पर आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो आपको रोने नहीं देते. तो भाई ये हमारे शौकीन रेडियो सर हैं, शौकीन सर्वर बोलते हैं अपने आप को, तो उन्होंने मैसेज भेजा है. बहुत ही प्यारा मैसेज है. बने रहिए हमारे साथ. दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत. वेल, आज आप लोगों को ये भी पता होगा कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है एंड वी आर गोइंग टू शेयर अ लॉट मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. सो 12 to 1 इज़ गोइंग टू बी दैट आर राइट आफ्टर द न्यूज़ हेडलाइंस. सो प्लीज़ बने रहिए एंड जानिए कि हेपेटाइटिस बी एक्चुअली क्या होता है, ये लिवर पर कैसे इफेक्ट करता है एंड हम इससे कैसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं.

सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। हमारे साथ एक बहुत ही अनुभव डॉक्टर आ रहे हैं जिन्हें इस मामले में सब कुछ जानकारी है। सो प्लीज़ बने रहें एंड जानिए कि आप अपने और अपने आप की, अपने वालों की कैसे सहायता कर सकते हैं, कैसे उन्हें सेफ गार्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ नमस्ते हेलो आदाब एंड राइट इन द नेक्स्ट आवर विल बी टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी बिकॉज टुडे इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। स्टे ट्यून्ड।

0: सुनी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Well, namaskar and welcome back to Namaste Hello Adab. This is third segment and like I said, we have got someone very, very special today because today is World Hepatitis Day. We have Dr. Ramesh Reddy Awula with us, who is a gastroenterologist in the Continental Hospital Financial District. So we will have a lot many questions. Agar aapke paas koi bhi question hai with regards to hepatitis B, you can message it to us and we will definitely take it with the doctor. So we are going to start first with his introduction. I think introduction to hamari language mein sirf naam and hospital tak hai, but hum sir se poochte hain ki sir ne aisa kya socha ki bhai unhe doctor banna hai and doctor banke isi segment mein aana hai. To sir, sabse pehle aapko namaskar and welcome to the show. We are really glad to have you here because we are going to get a lot of information today. So sir, aapke baare mein.
1: Namaskar ma'am. Main bhi bahut shukrgozar hoon aapka kyunki mujhe ye opportunity diya gaya hai ki main ye opportunity use karke hepatitis ke baare mein logo ko thoda information jo important hai mere khayal se wo logo tak pahunch sakta hai. Thank you.
0: Right sir. So sir, kis age mein aapko laga ki aapko doctor banna chahiye and what you know inspired you to become a doctor?
1: Mujhe wo question actually bahut simple hai ma'am. Har person ke liye ek role model hota hai. Mujhe jab tak wo role model ka shabd ka मीनिंग भी नहीं पता था, बट द थिंग वॉज बचपन में माई ब्रदर वॉज अ डॉक्टर एंड वन ऑफ माई नेबर शी वॉज ऑल्सो ए गायनेकोलॉजिस्ट, शी वॉज एल्डर टू मी बाई अराउंड 15 ईयर्स, सो दे वर माई इंस्पिरेशन, सो दे वर माई वर्ल्ड, सो आई डिड नॉट, सो दे यूज टू टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ मेडिसिन अलॉट और पेशेंट को कैसा ट्रीट करते हैं और ये बीमारियों के बारे में और उससे कैसा बचना है एंड ऑल दैट. सो आई गॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट बहुत अर्ली एज में एंड दैट इज़ हाउ इन माई स्कूल इट सेल्फ माई आई लीन टूवर्ड्स बायोलॉजी एंड देन बिकेम ए डॉक्टर.
0: ऑल राइट, दैट्स वंडरफुल सर. एंड ऐसे इंस्पिरेशन मिलते जाएंगे तो आई एम श्योर वी विल हैव लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स एंड वी विल बी ऑल फिट एंड फाइन वेरी सून. सो सर, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, सो आप हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बता सके, कुछ नॉलेज शेयर कर सके, दैट वुड बी रियली ग्रेट.
1: वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज WHO मनाता है मैम एवरी ईयर ऑन दिस पर्टिकुलर डे. सो दिस पर्टिकुलर डेट हैज़ बीन चूजन बिकॉज आज एक पर्सन डॉक्टर ब्लूमबर्ग के नाम से एक US में डॉक्टर हैं. उन्होंने 1960s में पहली बार दुनिया में ये हेपेटाइटिस बी के वायरस को आइसोलेट किया. उन्होंने जगह उससे पहले एक्चुअली हेपेटाइटिस क्यों होता था, किस वजह से होता था, किसी को भी नहीं मालूम था. डॉक्टर्स को सिर्फ ये और पूरा हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को, साइंटिस्ट को सिर्फ ये मालूम था कि हेपेटाइटिस मतलब जहाँ आपके आके पीले होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक मोशन के और या कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से ट्रांसफर होता है और एक ब्लड प्रोडक्ट यूसेज से जो कंटामिनेटेड होता है उससे ट्रांसफर होता है. लेकिन किस वजह से होता किसी को मालूम नहीं. तो उन्होंने बहुत जगह ट्रैवल किया, जगह जगह से उन्होंने लोगों का सैंपल लिया जिनको जॉन्डिस था. उन्होंने एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया से जो सैंपल लिया गया था उसमें उन्होंने वो सैंपल में 5 साल के शोधन के बाद उन्होंने और उनके टीम मेंबर ने ये हेपेटाइटिस बी के वायरस को पहली बार

0: आइसोलेट किया,
1: ओके
0: तो एंड ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट। उन्होंने उसके बाद आगे जाके उसका वैक्सीन भी बनाया, और वो वैक्सीन भी इट्स अ डिफरेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन। इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो बोलते हैं, जिसमें रिएक्शंस कम होते हैं कंपेयर टू अदर वैक्सीन्स, वो पहला उन्होंने बनाया था। तो उनके याद में आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस भी ये डेट चुना गया है बाय WHO।
1: ओके एंड सर अनदर क्वेश्चन, ये काफ़ी तरीके से फैलता है जितना मुझे पता है, जैसे कई बार बाय बर्थ आता है, दिस इज़ ऑल्सो एन STD, या ऐसे कोई और रीजंस हो सकते हैं इसके अलावा जिसके कारण किसी में हेपेटाइटिस बी का वायरस आ सकता है?
0: ये अपॉर्चुनिटी में एक बार पूरे हेपेटाइटिस को मतलब ABCDE बोल के 5 तरीके के होते हैं मैम। तो इसमें क्या है, देर आर टू ग्रुप्स, हेपेटाइटिस ए एंड ई। जैसे मैंने अभी बोला था, कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड से होता है। हमने हाथ अच्छी तरह से नहीं धोया, हमारा सैनिटेशन अच्छा नहीं है, वाटर में वाटर और ड्रेनेज पाइप्स नज़दीक में है, तो इस वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी सी एंड डी, इन तीनों का जैसा बिना प्रोटेक्शन के लैंगिक संबंध होना, या जो नीडल एक पर्सन को यूज़ किया गया है या तो इंजेक्शन देने के लिए या तो उनका हेयर कट या शेविंग करने के लिए, वही नीडल बाद में दूसरा और वो कट हो गया और उस पर ब्लड है और वही नीडल को हमने दूसरा पर्सन को भी यूज़ किया है, या इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स कहते हैं उनको भी यूज़ किया है, या इन लोगों को ज़्यादा फैलने की गुंजाइश रहती है, या हमने किसी को ब्लड दिया है मतलब ब्लड चढ़ाया है जिसको हमने अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं किया, तो उससे भी ये फैलता है। तो before 90s, जब हमको इसको टेस्ट करने की ज़्यादा हमको फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो जब हमको ब्लड देना पड़ता था तब हमको मजबूरन देना पड़ता था, जब क्योंकि हमारे पास वो टेस्ट नहीं थे कैसा टेस्ट करना। तो लेकिन 90s के बाद ये हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्टिंग अवेलेबल हो गया है हर जगह, और अभी बहुत स्ट्रिक्टली स्पेशली इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम early 90s, तो एवरी ब्लड प्रोडक्ट आइदर या हम ब्लड चढ़ा रहे या प्लेटलेट्स चढ़ा रहे या प्लाज्मा चढ़ा रहे, उनको एलॉन्ग विथ HIV हेपेटाइटिस बी एंड सी को भी टेस्ट किया जाता है पहले ही, और उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है अगर ये पाया गया है तो।
1: ओके सो नाउ ऑल द प्रिकॉशंस आर ऑलरेडी बीन टेकन केयर, एंड मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे तब HIV के बारे में सबको नॉलेज दिया जा रहा था, तभी व्हेन वी गॉट टू नो कि इंजेक्शंस यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी का ब्लड अगर आता है तो ये सारे प्रिकॉशंस एनी वे आई थिंक पीपल आर टेकिंग नाउ इवन इन द हॉस्पिटल्स. बट बीच में कई बार ऐसे यू नो न्यूज़ भी आती थी, जैसे आपने कहा कंटेमिनेटेड वाटर अगर जाता है बॉडी में या फूड जाता है तो भी हो सकते हैं. जैसे बीच में बहुत पहले की बात है, किसी ने पानीपुरी वाला एक न्यूज़ था कि पानीपुरी खाने में शायद उनकी बॉडी का कुछ पार्टिकल गया एंड देन उससे HIV हो रहा था, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है
0: फर्स्टली मैम,
1: चांसेस?
0: HIV ऐसा पानीपुरी से नहीं फैलता है, HIV लोगों को छूने से भी नहीं फैलता है,
1: एग्जैक्टली
0: ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रूफ भी नहीं है। जैसे आपने बताया है, सिर्फ नीडल्स से कंटेमिनेटेड नीडल्स या कंटेमिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स, या हम बिना प्रोटेक्शन के जब लैंगिक संबंध लगाते हैं तो जिनको ऑलरेडी HIV या हेपेटाइटिस बी या सी है उनसे ही फैलता है। तो यह हेपेटाइटिस जो आपने बोला है कि फूड से फैलता है जैसे पानीपुरी से, या वो हेपेटाइटिस ए एंड ई है बेसिकली। सो वो एक्चुअली रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमको रेनी सीजन में स्पेशली फूड का ख्याल रखना चाहिए कि वाटर जहाँ हम खा रहे हैं या जो हम पी रहे हैं वो कंटेमिनेटेड नहीं हो।
1: ऑल राइट सर, सो हम अभी क्या करेंगे, हम एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि हम इससे प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं. सो बने रहिए हमारे साथ, शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, एंड हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में, कैसे फैलता है. देर आर लाइक ABCDE, सो या आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू टॉक मोर अबाउट इट. वी हैव आर डॉक्टर विद अस, सो स्टे ट्यून्ड. एंड राइट नाउ कमिंग अप इज अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी ABCD2, द सॉन्ग इज चूनर, स्टे ट्यून्ड.

0: Alright, so that was Chunar by Arijit Singh from the movie ABCD2. And now we are talking back with the doctor and we are talking about hepatitis B. We are in conversation with Dr. Ramesh Reddy Awula, who is a gastroenterologist and he's working with Continental Hospital Financial District. So सर हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में एंड हमने लास्ट सवाल ये किया था कि हम हाउ कैन वी प्रिवेंट आर सेल्व्स फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, इसके लिए प्रिकॉशंस क्या रहेंगे, इफ यू कैन टॉक अबाउट इट प्लीज़.
1: हेपेटाइटिस ए एंड ई मैम, आई वुड लाइक टू, एज आई टोल्ड, मैं अभी ये दो ग्रुप में डिवाइड करता हूँ. हेपेटाइटिस ए एंड ई मेनली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से होता है, तो इसको प्रिवेंट करने में दो स्ट्रैटेजीज रहने चाहिए. एक तो हमें ऐसा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर का अवॉइड करना है, वो जो स्पेशली रेनी सीजन में हमको ध्यान रखना है कि ड्रेनेज वाटर, ये हमारा फ्रेश वाटर सप्लाई से नहीं मिल रहा है. वेजिटेबल्स को अच्छा धोना है, और जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए है उनको किचन का यूजुअली काम नहीं

0: करना है जब तक वो
1: ओके
0: ना पूरा रिकवर हो जाते हैं। वो अलग एक एक पर्सन का इंक्यूबेशन पीरियड और सिम्टम्स के हिसाब से उन्होंने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कितना कैसा प्रिकॉशंस लेना है। सेकेंड, द सेकेंड स्ट्रेटजी इज टू टेक वैक्सीनेशंस। जो हम टीका लगाते हैं बचपन में, तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड ऑल्सो ड्यू टू अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, बोथ हेपेटाइटिस ए एंड बी का वैक्सीन हमको लेना है। हमारे इंडिया में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इन मिड 2000 से गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करना शुरू किया और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। एवरी गवर्नमेंट इनिशियली पायलट प्रोग्राम के हिसाब से एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड मेन मेडिकल कॉलेजेस और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट ने ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देना शुरू किया। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमारे इंडिया में ही तीन कंपनियों ने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, उसके वजह से प्राइस भी कम हुआ। एंड अभी ये डिक्टम है, मतलब ये रूल है जो हम फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस, कि बच्चों को जो पैदा होते हैं उनको पैदा होने के 24 आवर्स पहले ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देना है। तो दैट इज़ बीइंग फॉलोड इन ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट फॉर बोथ इन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एक्सेप्ट वेयर होम डिलीवरीज आर टेकिंग प्लेस, दे आर वेरी फ्यू नाउअडेज और मे बी समटाइम्स इन ट्राइबल रीजन। सो मेजोरिटी ऑफ द यंगर जनरेशन हु हैव बीन बॉर्न आफ्टर मिड 2000s आर बीइंग कवर्ड। वो अच्छा कवरेज है उनको, उनका अच्छा इम्यूनिटी है हेपेटाइटिस बी के लिए। एक हेपेटाइटिस ए के लिए उनको अच्छा इम्यूनिटी सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने वैक्सीन लिया है। दूसरी बात है, जो बड़े लोग हैं मतलब मिड 2000 से पहले पैदा हुए हैं, 90s में, 80s में, 70s में एक्सेट्रा, उनको हेपेटाइटिस ए एक्चुअली एक ज़माने में इंडिया में बहुत रैम्पेंट था। तो लगभग सभी बच्चे एक टाइम पे यूजुअली हेपेटाइटिस ए से इफेक्ट होते थे, तो उनको एक बार रिकवर होने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी था। लेकिन अभी जनरेशन जैसा जैसा चेंज हो रहा है, ये हर्ड इम्यूनिटी जो कहते हैं ये हमारे कम्युनिटी में वो कम हो रहा है, इसीलिए अभी हम एडल्ट्स में भी हेपेटाइटिस ए ज़्यादातर देख रहे हैं स्पेशली रेनी सीजन्स में। सो आवर रिकमेंडेशन इज़ दैट जो लोग फाइनेंशियली उन्हों एफर्ट कर सकते हैं, इट इज़ नॉट सो कॉस्टली ऑल्सो, दे उन्हों उनको हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन लेना चाहिए, दो डोसेस का। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया है स्पेशली जो मिड 2000 से पहले पैदा हुए थे उनको भी लेना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कब हम एक्सपोज हो जाएंगे। इवन अनवांटेड, मतलब समटाइम्स वांटेडली नहीं, अनवांटेडली भी वी माइट बी एक्सपोज्ड इन मेनी सिचुएशंस टू सम नीडल्स विच आर कंटेमिनेटेड एक्सेट्रा। सो आई थिंक आई रिकमेंड एवरी एडल्ट पर्सन टू टेक द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। किड्स वन यू कैन चेक द वैक्सीनेशन स्केड्यूल, उनका जो वैक्सीनेशन चार्ट रहता है बचपन का, उसमें एग्जैक्टली स्केड्यूल के हिसाब से उनका अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है तो दे आर ऑलरेडी इम्यून टू इट।
1: ओके सो सर, आई थिंक पहले इतना ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता था। मैनी पीपल दे आर जस्ट टेकिंग द वैक्सीन बिकॉज कोई उन्हें बोल रहा है कि आप जाके वैक्सीन ले लीजिए, बट क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कई लोगों को याद भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन ले चुका है बट मुझे पता नहीं है, अगर मैं फिर से जाके लेने की कोशिश करूँ तो क्या इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? या
0: दूसरी बार हेपेटाइटिस वैक्सीन लेने में कोई इम्प्लीकेशंस ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं मैम, बट द थिंग इज़ हमको ये डिसाइड करना है कि वो ज़रूरत है कि नहीं। देर आर ओनली टू सिचुएशंस, दो तरीके के सिचुएशंस रहते हैं जिसमें हमको दोबारा लेना पड़ता है। फर्स्ट वाला सिचुएशन ये है कि आपको हेपेटाइटिस वैक्सीन दिया गया पूरा स्केड्यूल में तीन डोसेस, या आपने बीच में डिफॉल्ट कर लिया, लेकिन दोनों सिचुएशन में आपको अगर रेस्पॉन्ड नहीं हुआ, आपको एंटीबॉडीज किसी ना किसी चीज़ के वजह से, आपकी इम्यूनिटी कम होने के वजह से, आप वीक होने के वजह से, आपके एज के हिसाब से, या आपको डायबिटीज़ वगैरह है वो कंट्रोल में नहीं है, तो कभी कभी एंटीबॉडीज़ अच्छा नहीं बनते हैं। तो उनको एक बार एंटीबॉडी का लेवल्स चेक करके उसके बाद अगर चाहिए तो दूसरे, या अगर एंटीबॉडी बिल्कुल भी नहीं बना है, अनडिटेक्टेबल है, तो डेफिनेटली फिर से वो स्केड्यूल फॉलो करके आपको लेना है। दूसरी बात है, अगर आपका
1: ओके दीज आर दी ओनली थिंग्स। ओके सर, नाउ अनदर क्वेश्चन आई हैव इज़, अगर एक बार हेपेटाइटिस आ गया किसी को तो इज़ इट लाइक कांट बी ट्रीटेबल, और लाइक हाउ इज़ इट, हाउ डज इट वर्क? एक बार आ गया तो बॉडी से कभी नहीं जाता या?
0: नहीं, देर हैज़ बिन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। हेपेटाइटिस ए एंड डी आर नॉट क्रॉनिक डिसीजेस, हेपेटाइटिस ए एंड डी आर ओनली शॉर्ट टर्म डिसीजेस.
1: ओके
0: जैसे हमको मलेरिया

0: होता है, डेंगू होता है, या कोई फूड पॉइजनिंग होता है, ऐसा ये भी शॉर्ट टर्म है। ये उसका कोर्स जो सिम्टम्स जो रहते हैं 1 to 2 months के बीच में ख़त्म हो जाते हैं, या तो सीरियस होते हैं जो टाइम पे हमको हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी एंड सी ऐसा नहीं है। बी एंड सी क्रॉनिक, मोस्टली क्रॉनिक है। जिनको हेपेटाइटिस बी पहली बार वो वायरस बॉडी में आता है, उनको लगभग 30% लोगों को पूरा जीवन उसके साथ ही गुजरना पड़ता है, क्रॉनिक हो जाता है। हेपेटाइटिस सी में 80% लोगों को क्रॉनिक होता है, 80 से 90% लोगों को। लेकिन अभी हेपेटाइटिस सी का जो ट्रीटमेंट में जो इम्प्रूवमेंट्स आया है, दे हैव बिन वेरी ड्रामेटिक इन मॉडर्न साइंस। मैं जब MBBS पढ़ता था वो टाइम पे हेपेटाइटिस सी वो हमें ऐसा पढ़ाया गया था कि ये बहुत क्रॉनिक डिसीज़ है, हम इसको बॉडी से नहीं निकाल सकते, और उसका ट्रीटमेंट भी इंजेक्शन जो हर साल हर हफ्ते लेना पड़ता था बहुत मुश्किल था, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत थे। लेकिन अभी लास्ट 10 ईयर्स में जो ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, हमने हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट जो इससे पहले बॉडी से नहीं निकाल सकते थे, क्रॉनिक डिसीज़ था, सिर्फ 3 महीने का टैबलेट्स दे के मोर देन 95% हम क्योर रेट अचीव कर रहे हैं। क्योर वायरस पूरा हमारे बॉडी से निकल जा रहा है। एंड दोज मेडिसिन जो है उसका कॉस्ट भी अभी बहुत कम हुआ है। एंड जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे नेशनल वायरस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP के आध्वर्य में हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं ऐसा प्रोग्राम में भी पार्ट हो चुका हूँ, वेयर आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मेडिसिन जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है, जो लोग हेपेटाइटिस सी को सी है उनको, जो लोग 5 साल से 10 साल से या 20 साल से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी वो मेडिसिन देने के बाद 3 महीने के बाद वो कम्प्लीटली क्योर हो चुके हैं। तो ये एक अफवाह आपके माइंड में निकलना है कि नहीं, इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, वो नहीं है। हेपेटाइटिस सी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है अभी। एंड हेपेटाइटिस बी का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन उधर मेडिसिन हमको बहुत अभी ईयर्स तक यूज़ करना पड़ता है, 3 से 4 साल कभी कभी ज़िंदगी भर।
1: सो सर, फॉर एग्जांपल, जैसे ये STD भी है एंड एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट होता है, तो अगर मान के चलिए जो जिसे ऑलरेडी है हेपेटाइटिस बी होता है, राइट? ये शायद
0: हेपेटाइटिस बी एंड सी बोथ कैन बी
1: वो
0: ट्रांसमिटेड बाय
1: दिस इज़ एन
0: यस
1: STD
0: मैम,
1: बेसिकली.
0: एसटीडी, यस
1: सो अगर कोई ऑलरेडी उसके मेडिकेशन में है, सो चांसेस क्या रहते हैं दूसरे को ट्रांसफ़र होने के लिए?
0: मैम। हेपेटाइटिस सी का तो जैसे मैंने बोला है, वो 3 महीने का आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपका सक्सेस रेट आपने अचीव किया और उसको हमने एस्टेब्लिश किया कि आप क्योर हो चुके हैं, देन उनको नहीं है, उनसे किसी और को बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, उन्हें क्योर हो चुके हैं, दैट्स ऑल।
1: सो वंस इट इज क्योर्ड देन
0: इट इज
1: इट्स
0: क्योर्ड
1: क्योर्ड.
0: फॉर हेपेटाइटिस बी, दैट इज नॉट द केस। हेपेटाइटिस बी का आप मेडिसिन भी लिए तो डेफिनेटली मैं ये सुझाव दूंगा कि आप प्रोटेक्शन यूज़ करें, क्योंकि वो फिर भी फैल सकता है, क्योंकि वो ब्लड के लेवल के ऊपर डिपेंड होता है।
1: सो वेदर यू आर ऑन मेडिकेशन और नॉट, इट इज
0: इट इज
1: पॉसिबल
0: बेटर।
1: दैट इट विल बी ट्रांसमिटेड.
0: हाँ, आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो कंडीशन के अलावा जो भी कंडीशन है वो टाइम पे आपको प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा।
1: राइट सर. सर, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग है, उसे लग रहा है कि हेपेटाइटिस आने के चांसेस है, तो व्हाट आर द चेंजेस अ पर्सन कैन फील अबाउट, लेकिन वो सिम्टम्स क्या होते हैं हेपेटाइटिस
0: या
1: आने के?
0: अनफॉर्चुनेटली मैम, ये जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी एंड सी, इनके इनिशियली कुछ भी सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं। कुछ लोगों को पैदाइश से ही हेपेटाइटिस बी और सी रहता है, जो एक्चुअली इंडिया में बहुत कॉमन है, और वो जाके 20 साल के बाद या 30 साल के बाद लिवर का डैमेज के हिसाब से, मतलब जॉन्डिस आना या पेट में पानी आ जाना, तो वीकनेस आ जाना, वेट घट जाना, तो इसके हिसाब से बाहर निकलता है। इंडिया में एक्चुअली ये एस्टिमेट है कि इफ़ ये पूरा इंडिया का अगर एक एवरेज लिए तो हेपेटाइटिस बी का अराउंड 1.5 to 2% प्रिवेलेंस है, मतलब, और हेपेटाइटिस सी का अराउंड 0.5% प्रिवेलेंस है। मतलब ये कुल मिला के अगर हमने एक एवरेज लिया इंडिया में, 100 लोगों को हमने एक रूम में सम्मिलित किया, तो उनमें 2 या 3 लोगों को डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी या सी रहेगा,
1: 100%
0: बट उनको पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। और ट्रेजेडी यही है कि जब हम उसको ठीक कर सकते हैं लिवर को डैमेज करे बिना पहले ही, लेकिन वो हमको ये पकड़ना है, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है अभी।
1: सो सर, बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी लो है, या जिसके लिवर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या पीपल हु आर हैवी ड्रिंकर्स इन ऑल, यू थिंक उन लोगों को हेपेटाइटिस आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं?
0: मैम इम्यूनिटी अगर कम है डेफिनेटली किसी चीज़ की वजह से भी आपको
1: ओके
0: डेफिनेटली ये जो जैसे मैंने बोला था कि हेपेटाइटिस बी एंड सी कुछ लोगों को आके चले जाते हैं।

0: लेकिन कुछ लोगों को डिपेंडिंग अपन इट इज़ बी और सी,
1: वो
0: 30 से 80% तक
1: राइट.
0: क्रॉनिक रहता है. वो क्रॉनिसिटी होने के चांसेस अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं. दूसरी बात है, जिन लोगों को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी और सी है, उनको अगर डायबिटीज़ हुआ या उन्होंने ज़्यादा पीना शुरू किया अल्कोहल या स्मोकिंग की है, तो या उन्होंने कोई ऐसा दवाई यूज़ किया जिससे लिवर का डैमेज होता है, डेफिनेटली इट इज़ लाइक अ डबल हिट फॉर द लिवर. डैमेज वो मल्टीप्लाई हो जाता है लिवर का. जो डैमेज हमको 10 साल में होना है वो 5 साल में ही हो जाता है.
1: राइट.
0: एंड एट वन पॉइंट इट विल बिकम इररिवर्सिबल एंड टर्न इनटू सिरोसिस. एक बार अगर सिरोसिस स्टेज में आ गया देन ओनली ट्रांसप्लांट इज द ऑप्शन.
1: ओके, ऑलराइट. सो बेसिकली लिवर को प्रोटेक्ट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एनी टिप्स सर की बेसिक यू नो डे टू डे लाइफ में कि हम अपने लिवर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं?
0: मैम जैसे अभी हेपेटाइटिस बी का सी का पहले बात हुआ है, तो पहला मैं बोलता हूँ कि उसका टेस्ट करना है हर एडल्ट को. जाके अपने एनुअल हेल्थ पैकेज जो करते हैं, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एनुअल थोड़े मेडिकल टेस्ट जो है जो करते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी और सी रहना चाहिए. और उनको हम लोग चेक करना चाहिए कि आपको है कि नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता. आपके फैमिली में सभी अच्छे होंगे लेकिन सबको सिम्टम्स नहीं होंगे हेपेटाइटिस बी और सी में. आप सोचेंगे कि किसी को भी फैमिली में जॉन्डिस नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 2 से 3% लोगों को रहता है, तो हमको ये टेस्ट करके हमको पता करना है कि हमको है कि नहीं. अगर नहीं है तो वैक्सीन ले लेना है जो हेपेटाइटिस बी के लिए स्पेशली, जो मिड 2000 से पहले पैदाइश हुए हैं जिनको बचपन में नहीं मिला है. और दूसरा अगर है तो डेफिनेटली अगर आप डॉक्टर से अब कंसल्ट करें तो डेफिनेटली लिवर को डैमेज करे पहुंचे बिना ही पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं.
1: राइट सर. ओके सर, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम माय एंड. यू थिंक देयर इज एनीथिंग व्हिच यू वुड वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड, एनीथिंग फॉर द लिसनर्स?
0: डिटेक्शन एंड वैक्सीनेशन मैम, दीज टू आर द मेन इंपॉर्टेंट. जो जैसा अभी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में WHO का स्लोगन भी है, लेट्स ब्रेक इट डाउन, तो उसका मीनिंग है कि हमको वो दीवार तोड़ना है जो दीवार हमारे पेशेंट के और जो टेस्ट के बीच में रहता है. जो दीवार हमारे पेशेंट के जो जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी और सी है और उनका ट्रीटमेंट के बीच में रहता है, फाइनेंशियली या जो किसी को हॉस्पिटल बहुत दूर रहता है, वो हमको दीवारें तोड़ के हमको ये ट्रीटमेंट जो है उन तक पहुंचना है जिनको ज़रूरत है. और जिनको वैक्सीन हमारा ये WHO का और इंडियन गवर्नमेंट का भी ये मैंडेट है कि 2030 तक हमको हेपेटाइटिस सी या एंड बी को हमारे इंडिया में नए जो इन्फेक्शन है वो निकाल देना है. तो वो हमको अचीव करने के लिए टारगेट ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि हमको डिटेक्ट करना है. वो डिटेक्शन सर्विसेज अभी सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट एवरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स नाउ आर इट बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द मेडिकल नॉलेज, इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल. एंड देन वैक्सीनेशन भी अभी हर जगह हर मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है. गाँव में भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में रहते हैं उधर जाके आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं.
1: राइट सर, थैंक यू सो मच सर. इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. इट वॉज सच ए नॉलेजेबल सेशन एंड इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू हियर एट ऑल इंडिया रेडियो. सो वी वर इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर रमेश रेड्डी अवला. वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. And we discussed about hepatitis B. So hepatitis, so the main thing is सबसे ज़्यादा awareness बहुत ज़्यादा important है. So yes, checkup कराते रहिए. And अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल लगता है या नहीं लगता है vaccination ज़रूर लेना चाहिए जैसा हमें डॉक्टर से पता चला. So चलते हैं next गाने की तरफ and उसके बाद हम अपने शो के साथ कंटिन्यू करेंगे. That is it about the hepatitis. And if you have any questions, you can shoot it. We will still be able to answer. We'll try our best to answer all those questions. This is Namaste Hello Adab only on All India Radio Rainbow FM 101.9. Rainbow ke saath hai live rangeen and main hu aapke saath aapki Preet.

0: फैमिली है, तो आप प्लीज़ जाके लीजिए एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करिए हेपेटाइटिस आने से। एंड बारिश का मौसम है तो येस, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ट्राई टू ईट एट होम, ट्राई टू ईट एट वेरी यू नो सेफ प्लेसेस। सेफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल इतनी जगह पे रेड पड़ रही है सेफ्टी को लेकर, फूड इंस्पेक्टर्स जा रहे हैं फूड सेफ्टी को लेकर, कि बहुत सारी जगह से यही रिपोर्ट आ रही है कि कहीं पर भी सफाई मेंटेन नहीं की जाती है। तो यस, ये सारी चीज़ें एक हेल्दी इंसान को काफ़ी बीमार कर सकते हैं। सो आपकी हेल्थ आपके हाथों पर है, ख्याल रखिए अपना एंड अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए। स्टे ट्यून्ड, हम चलेंगे गाने की तरफ राइट आफ्टर ए स्मॉल ब्रेक।
1: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి తేదీ ఆగస్టు 7. వివరాలను సమీపంలోని స్టడీ సెంటర్లో లేదా హెల్ప్ డెస్క్ 0402368033 లేదా 2368055 లో లేదా www.braou.ac.in లో పొందవచ్చు.
2: Hey there, do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.

Such a beautiful track and sharp. It is 1 o'clock in the studio, and yes, we are now starting the show Hello Rainbow, wherein आप हमसे हम आपसे बात कर सकते हैं. एंड आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में. आई एम श्योर कि आप सभी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, इसने सब कुछ देखा है. हमारी जनरेशन ने स्मार्टफोन्स देखा है, हमारी जनरेशन ने बहुत सारी यू नो लॉकडाउन देख लिया, बीमारियां देख ली, बहुत सारी चीज़ें देख ली है. बट यू नो, इतना ज़्यादा जो नॉलेज शेयरिंग है वो इसलिए हो पा रहा है बिकॉज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं. स्मार्टफोन्स में हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स आ चुके हैं कि वी रियली के नॉट यू नो बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉलेज. अगर आप न्यूज़ नहीं सुनते हैं तो भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी. आप न्यूज़ सुनते हैं तब तो आ ही रही थी. आप कुछ करें ना करें, आप इंस्टाग्राम में हैं, आप फेसबुक में, आप कहीं पे भी हैं, इन्फॉर्मेशन अपने आप आपके पास चल के आएगी. तो हमारा टॉपिक आज इसी चीज़ से रिलेटेड है. एंड इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक बताऊँ, शो चल रहा है हेलो रेनबो, एंड इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं. कॉलिंग लाइन्स है 0402323-0030, 0402323-4821 एंड 0402970-4715. सो ये आपकी कॉलिंग लाइन्स है. अच्छा, फ़ोन अभी से ही आने लगा है. टॉपिक तो सुन लीजिए. टॉपिक ये है कि आपकी जो लाइफ है वो स्मार्टफोन्स आने से पहले कैसी थी, या स्मार्टफोन्स ने आपकी लाइफ को किस तरह से बदला है. वो बदलाव अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, बट लाइफ बिफोर स्मार्टफोन्स, आपकी ज़िंदगी आपके स्मार्टफोन्स से पहले कैसी थी, बस आपको यही बताना है. बने रहिए हमारे साथ. शो चल रहा है हेलो रेनबो, एंड उसके लिए हम गाना प्ले करेंगे बहुत ही सुंदर सा. बट लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक बिफोर वी स्टार्ट द शो. स्टे ट्यून्ड.

0: So that was Shararat from the movie Dhurandhar. Such a beautiful track it is, right? And now we have got the callers. Hello.
1: Very good afternoon, madam ji. बहुत दिन के बाद नमस्कार.
0: Very good afternoon, sir. नमस्कार आपको भी जी. बहुत दिनों के बाद आई हूँ आज. अच्छा लग रहा है. आप बताइए कैसे हैं सर.
1: श्रीनिवासा मालक पेटा
0: जी सर.
1: तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है. आज वो नेसेसिटी हो गया है सर.
0: क्या हो गया है सर.
1: आज जो स्मार्टफोन बोल रहे हैं ना वो नेसेसिटी हो गया है.
0: जी बिल्कुल नेसेसिटी हो गया है जी.
1: छोटे फोन देखने को भी नहीं मिल रहे. ये बोले तो बीबी बोली थी मेरे को बड़ा फोन रखो छोटा फोन दिला कर दो ढूंढ ले तो किधर भी.

0: हजार डेढ़ हजार दो हजार बोल के बोल लेते, मैं बोला अरे बड़े फोन ले ले रहे अच्छा रहता रहे सुन, नक्को मेरे को क्या जरूरत नहीं है मेरे को छोटा फोन होना हो। हम बोले अच्छी बात है, बोल के फोन दिला दिया था। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल हो गया। तो डिफरेंस क्या हो गया मैडम बोले तो, आप जो तो स्मार्टफोन के हिसाब से अगर अच्छे के लिए यूज करे तो उसमें दुनिया का फायदा है। आप जो चाहे वो आपको 5-10 मिनट में आपके घर पे रह जाता है
1: जी।
0: आपको जो चीज चाहिए, खाना चाहिए, शूज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी चाहिए जो मार्केट में मिलता है, आप जो चाहे वो आपको 5-10-15 मिनट में मिल जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो घर में बैठे बैठे के हमारे जैसे लोगों को क्या हुआ है, जो मेडिसिन होना है मेडिसिन दुकान वाले को बोल देते अन्ना भेज दे, तुम बोल के उन्हें बच्चों को देके भेज दे रहा है। चलो 10-15 रुपए ज्यादा ले रहा है, छोड़ो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी गया तो भी अपन गए तो भी होना ही पड़ता
1: जी।
0: तो आपको जैसे जो आपका जो नेसेसिटी है, जो आपको जरूरत है, वो काम जो है जो बहुत ही इजी में हो जा रहा है। वो तो अच्छा अच्छा यूज करना है आप सोचे तो कंपलसरी इट विल बी वेल एंड गुड। स्मार्टफोन्स आर वेरी गुड। आप जो चाहे जो यूज करना चाहे जिस तरीके से यूज करना चाहिए आपको वो सहूलत में मिल जा रहा है। जैसा मेडिसिन सुन दो, जैसा डॉक्टर सुन दो, ऐसा क्या डॉक्टर थोड़े थोड़े मैं परसों बच्चा है जब मेरे को ऐसे ऐसा प्रॉब्लम रहते उन्हें ऑनलाइन मेरे को है बोल के ऑनलाइन में जब का जब मार के डॉक्टर साहब से मेरे को फोन पे बात करा के क्या टैबलेट लेना क्या है तो लेके आके दे के मेरे को उनसे बात करने से मेरे को अच्छा भी हुआ। सो है आपको अगर यूज करने का तरीका मालूम है तो आपको विदाउट एनीथिंग बगैर सोचे आपको थोड़ी देर में आपका काम बहुत ही सहूलत से बन जा रही है
1: जी।
0: तो इसके लिए ये लोग जो है स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। इसके पहले छोटा फोन था उसमें कुछ भी नहीं था, सो खाली इनकमिंग एंड आउटगोइंग था। तो ये जो जो ये गूगल पे होंदो ये होंदो पैसा होंदो वो होंदो ये जब कुछ भी नहीं था।
1: ओके सर।
0: तो देखो आपको पैसा देने का है भेजने का किसको दे भेजने का, अरे मेरे को 2000 भेज रहे बच्चों ने तक बोल के बैंक बगैर विदाउट गोइंग टू दे बैंक मेरे को आप बैंक वाले सही बोलते दे बैंक वाले बम्बा रहे मेरे को, अरे क्या साहब आप बैंक को आते नहीं कुछ भी नहीं करते तुम फोन पे पे पूरा काम चला ले रहे हो। तो मैं बोला क्या करते हैं सर फिर 25 ईयर्स हो गया फिर घर में बैठे तो ये हो रहा काम हो रहा तो कहीं को हम बैंक को बोल के।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि स्मार्टफोन्स के काफ़ी फायदे हैं, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो ओके सो ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो
2: हेलो एफएम रेडियो
1: जी सर, आपका नाम?
2: हाँ मैं राहुल बात कर रहा हूँ, सिकंदराबाद लोकेशन से यापराल। तो क्या मैं लाइव हूँ?
1: हाँ जी आप लाइव हैं
2: जी। तो आज का आपका टॉपिक था कि स्मार्टफोन्स आने से पहले आपका लाइफ कैसा था और स्मार्टफोन आने के बाद में लाइफ कैसा हो गया है।
1: जी
2: स्मार्टफोन आने से पहले हमारी जिंदगी खुशहाल थी, जैसे चिट्ठियों का इंतजार करना और लोगों से मिलना, लैंडलाइन पे लोगों से फोन करके बातचीत करना, तो काफी सारा जो बॉन्डेशन थे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप होती थी वो काफी अच्छी होती थी। स्मार्टफोन आने के बाद में लाइफ तो अच्छी हुई है, काफी सारी फैसिलिटीज तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ ही ये हो गया है कि हम लोग उसका मिसयूज करके लोगों में रिलेशनशिप बॉन्डेशन जो है दूर हो गए हैं। अभी
1: जी
2: सब कोई फोन में लगा रहता है, यानी फोन की जो आवश्यक जरूरत की चीजें हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग। तो जैसे इंस्टाग्राम में बैठ गए तो 3-4 घंटे वहाँ गुजर गए, फेसबुक में चले गए, तो मिसयूज हम लोग खुद ही कर रहे हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप दूर हो रही है, लोगों से अपनापन दूर हो रहा है और अपने आप और फोन में लोग ज्यादा मग्न हो रहे हैं, जिससे बाहर क्या हो रहा है ज्यादा करके आजकल की जो जेन ज़ी पीढ़ी है तो उनको बाहर के माहौल से ज्यादा ये नहीं हो पा रहा है, मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं
1: जी।
2: वो अपने फोन के अलावा बाहर की दुनिया से उनका संबंध ज्यादा नहीं बन पा रहा है, तो इस एडवांटेज हम खुद कर रहे हैं। बाकी तो स्मार्टफोन आने से पहले जिंदगी जो थी तो वो सुनहरे पल अभी नहीं मिल सकते।

0: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
1: गुड आफ्टरनून सर।
0: मेरा नाम ओल्ड सिटी मेहर बाबा जुबली से बात कर रहा हूँ मैडम।
1: अच्छा सर, आपका नाम मेहर बाबा है, ओल्ड सिटी है या जुबली हिल से है?
0: जुबली हिल से मैडम, ओल्ड सिटी
1: जुबली
0: में
1: हिल
0: नहीं
1: से
0: है।
1: बात कर रहे हो?
0: तिरुमला तिरुपति देवस्थान का बाजू है मैडम
1: जी सर जी।
0: जी। आपका ट्रैफिक अच्छा है मैडम, आपका बैंकिंग भी बहुत अच्छा है मैडम। स्मार्टफोन बोलते हैं मैडम, बहुत फायदा मैडम, मेरे घर से बहुत फायदा हो गया मैडम।
1: हाँ।
0: दिन भर रात भर देखने वाला देखते रहता है मैडम, या ऐसा देखे तो बहुत नुकसान ही होता मैडम। मेरे कहीं से पहले 15 साल का पहले मैडम गांव को पैसा भेजना बोले तो मैडम 100 को 5 रुपये, 5,000 रुपये भेजना बोले तो 250 रुपये होता। ये पैसा भेजने के भी पोस्ट ऑफिस को जाना पड़ता, फॉर्म फिलअप करना पड़ता, फिलअप करके दिए तो फिर वापस स्लिप आने को 8 दिन लगता मैडम, 7 दिन में पैसा पहुंचता मैडम। अभी आजकल ऐसे नहीं है मैडम, 1 मिनट में 10,000 20,000 भेजना बोले तो 1 मिनट में काम हो जा रहा मैडम। और एक बात मैडम, रेडियो, पहले रेडियो में मैं चार सेल डाल के रेडियो सुनते मैडम, चार सेल अभी 200 रुपये हो गए मैडम। अभी फोन में सुन रहा मैडम, 1 रुपये भी खर्चा नहीं है मैडम।
1: क्या बात है सर, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है आज सबसे
0: अभी
1: डिफरेंट।
0: और एक बात है मैडम, अभी हम लोग को गांव जाना बोले तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जाना बोले तो इधर से राजमंड्री 10 घंटा लगता मैडम। उधर कैसे बोले तो जाना बोले तो 10 घंटा में 1 मिनट में वीडियो कॉल करके देखे तो बात भी हो जाता मैडम, इन लोग भी दिखता मैडम। ये भी बहुत फायदा हो गया मैडम।
1: जी बिल्कुल सर,
0: मेरे
1: थैंक
0: कहीं
1: यू
0: से
1: सो मच
0: बहुत
1: सर,
0: फायदा हो गया मैडम। थैंक यू
1: थैंक यू सो मच
0: मेहर
1: फॉर
0: बाबा,
1: कॉलिंग।
0: थैंक यू मैडम।
1: सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है, रेडियो वाली स्पेशली, बाकी सब तो कर ही रहे। एक और एक कॉल लेते हैं हम। हेलो,
0: हरिओम,
1: हरि ओम सर जी, आपका नाम?
0: मेरा नाम विलास पेनुरकर है, मैं नल्ला कुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ।
1: जी सर, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, और अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो और भी अच्छा हो गया हूँ।
1: क्या बात है, ऐसे ही अच्छे रहिए सर। अब बताइए कि टॉपिक के
0: हाँ
1: बारे में क्या कहना है आपका।
0: जी, स्मार्टफोन आने के पहले हमारा जो जीवन था वो सही मानों में जीवन था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य को समाज में रहना, समाज के जो सदस्य हैं वो भले ही हमारे मित्र हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, तो उनसे मिलना, उनसे बातें करना, अपने दिल की बात उनके वहां तक, उनके पास तक पहुंचाना, उनकी बातों को सुनना, ये मनुष्य का स्वभाव है।
1: जी
0: लेकिन ये स्मार्टफोन क्या आ गया, अभी हमारे पास में तो समय है ही नहीं। पहले, आप सुन रहे हैं मुझे,
1: जी जी मैं सुन रही हूँ आपको
0: पहले
1: जी।
0: ये होता था कि घर पर कोई अतिथि आ जाए तो हम उसका मनपूर्वक स्वागत करते थे,
1: अभी क्या होता है
0: और
1: सर?
0: हमको बड़ा अच्छा लगता था कि भाई कोई हमारे घर पर आया है, उसके
1: हाँ।
0: साथ में हम घंटा दो घंटा आराम से बिताते थे। और होता ये था कि मान लीजिए पूरा परिवार, हमारे हमारे मित्र आए हैं तो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में वो आते थे, तो मित्र की बातचीत मित्र से होती थी, मित्र के पत्नी की बातचीत हमारे पत्नी से होती थी, हमारे बच्चे उनके बच्चे सब घुल मिल के खेला करते थे। तो एक ऐसा वातावरण बन जाता था जिसमें प्रेम ही प्रेम था,
1: जी
0: और हमारे पत्नी को उनके जो सदस्य आए हैं उनके लिए कुछ करने में बड़ा आनंद आता था, बड़ा समाधान प्राप्त होता था। लेकिन आजकल तो कोई अतिथि आ जाए तो हमको ऐसा लगता है कि भाई ये क्यों आया।
1: सर, आप तो अपनी पोल खोल रहे हो, अगर सर आपको कोई सुन रहा होगा तो अतिथि दोबारा आएगा नहीं आपके घर। सर इसके लिए पता है एक छोटा सा उपाय है, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे ताकि हम बाकी लोगों को भी बात करने का मौका दें।
0: एक मिनट लूंगा। और
1: जी सर।
0: अभी हम ये जो हमारा जो जीवन हो गया है ये एक यंत्र बन गया है, यानी बस सवेरे उठो, उठते ही पहले हम क्या करते हैं, स्मार्टफोन देखते हैं, सबसे पहले किसका संदेश आया है, किसको उत्तर देना है, यानी लगभग उठते उठते आधा घंटा एक घंटा तो उसी में चला जाता है। और फिर
1: जी
0: बाद में कहीं जाने की आने की या किसी से मिलने की जब बात होती है तो हम कहते हैं हमारे पास में समय नहीं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: जीवन
1: सर।
0: से प्रेम अभी चला गया है, जीवन में अभी प्रेम नहीं है। जैसे विदेशों में लोग जीते हैं ना, उसको कहते हैं मटेरियलिस्टिक जीवन, खाओ पियो मौज करो, तो यही हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति उस प्रकार की नहीं है, ये हम भूल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर।
0: आभारी हूँ,
1: हाँ
0: आभारी
1: जी,
0: हूँ।
1: हरि ओम सर जी, हरि ओम।
0: हरिओम।
1: सर ने भी बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन यू नो इसके लिए एक रूल मुझे लगता है कि जैसे काफी लोग

0: रहे हैं कि इंसान सोशल नहीं रह गया है। जब हम खाने के टेबल पे जाएं, हम डिनर पे जाएं किसी के साथ, तो पहला रूल होना चाहिए कि सब अपना फ़ोन उस वक्त तक के बिल्कुल ना देखें जब तक कि हम डिनर टेबल पे हैं। अगर घर पे कोई मेहमान आए तो आपके घर का रूल होना चाहिए कि घर में अंदर बैठने से पहले अपने फ़ोन जमा कर दे, ताकि उस बीच में एक्चुअली बातें हों। सर ने बिल्कुल सही कहा कि वो टाइम तो मैं भी मिस करती हूँ कि हमारे घर कोई आता था, किचन में कुछ अच्छा अच्छा बनता था घर के बने। अब तो हम घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं। इजी ये है कि जो लोग बहुत काम करते हैं, थक गए हैं, खाना बनाने का मन नहीं है, चलो फ़ोन उठाओ ऑर्डर कर लिया। एंड जो काफ़ी लोग यूपीआई की बात कर रहे हैं, हमारे फ़ोन पे एंड गूगल पे इनकी बात कर रहे हैं, भाई दैट वाज ओनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया जो हमारे मोदी सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने लेकर आया। एंड आज की डेट पे जितना डिजिटल पेमेंट मेथड इंडिया इंडिया में यूज़ होता है, उतना देश के किसी और कोने में नहीं होता है। सो दैट इज़ ऑल थैंक्स टू आर प्राइम मिनिस्टर सर, नरेंद्र मोदी सर। सो ऑफकोर्स बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नुकसान भी है, बट ये हमारे हाथ में है कि हाउ डू वी वॉन्ट टू यूटिलाइज इट। वेल स्टे ट्यून्ड, हम और भी कॉल्स लेंगे। हमारे कॉलिंग लाइन्स है 0402323482 एंड 2323003020, 2323482129704715। इस पे कॉल करके आप अपने विचार रख सकते हैं। समय थोड़ा सा कम लीजिएगा ताकि सबको बात करने का मौका मिले। टॉपिक चल रहा है कि स्मार्टफोन से पहले हमारी लाइफ कैसी थी। आपको जो भी लगता है अच्छी या बुरी, आप कोई भी चीज़, एक ही चीज़ के बारे में बात करें ताकि दूसरे भी बात कर पाएं। अभी चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। राइट आफ्टर दैट वी विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप फॉर यू। स्टे ट्यून्ड।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: सर तो
1: और एक
0: बताइए सर
1: बात और
0: टॉपिक के
1: समझ
0: बारे में।
1: लीजिए,
0: हाँ
1: और क्या
0: जी
1: है असल में भगवान की सृष्टि में जो प्यार का चीज है ना, प्रीति, वो प्यार और प्रेम, उसका मतलब जो है इंसान,
0: हाँ
1: वो दिखाने के वास्ते इंसानियत का एग्जाम्पल लेते थे। आप इंसानों को प्यार करने के लिए दिया था भगवान, और चीजों को इस्तेमाल करने के। आजकल क्या हुआ है, स्मार्टफोन आने से लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजों को प्यार कर रहे
0: जी
1: हैं। तो स्मार्टफोन लगा लेके जो पहले, वो राहुल जी जो बताए, पहला सुकून था। अरे सुकून था बोलो तो तुम चाह रहे उसको, वो सुकून तुम ही खोले रहे, तो फिर उसको सही सही मानिए से यूज करो तो अच्छा रहता। अभी
0: जी
1: डिजिटलाइजेशन है।

0: सही मानिए से यूज करो इमा तो अच्छा रहता। अभी डिजिटलाइजेशन है, आप जो बोले सो यूपीए तो वो ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है। और एक बात कहता हूँ मैं, प्रीत जी, मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, आप यकीन नहीं करते, जो नोट नोट मैं दूसरों को पूछ के ये कितना नोट है, ये नोट है, वो नोट नहीं, पूछने का जरूरत नहीं पड़ी अभी मेरे को। फोन के ऊपर अगर लगा दिए 500 का नोट है, 500 नोट, 100 नोट, 200 नोट, वो मेरे को बता दे रही
1: कैसे
0: और जो भी है।
1: कैसे पता चल रहा है?
0: वो ऐप, एक ऐप है, वो ऐप लोड करे सो हमारे बच्चे।
1: अच्छा, नाइस नाइस।
0: और एक बात कहता हूँ मैं प्रीत जी, हमारा जैसे ब्लाइंड लोगों को दूसरों का जरूरत नहीं पड़ रहा है, इस कार्ड का जरूरत ही नहीं पड़ रहा। आप यकीन नहीं करते, मेरा बच्ची जो है अभी जर्मनी में, मतलब अब्रॉड में है, वो जिधर भी है वो ट्रैकिंग रख रखे, किधर किधर जा रही है, लैब में क्या काम कर रही, घर को कब आ रही, सब पता लग रहा अपने को, एकदम सेफ दिख रहा वो, घर में हो, बाहर हो, या अब्रॉड में हो, या किधर भी हो। इसके वजह से बहुत ही बहुत बोलो तो बहुत एडवांटेजेस है, बहुत न्यूज न्यूज भी एक सेकंड में अपन को पता लग जा रहा कि दुनिया में सबसे बड़ा देश जो है उसका सबसे बड़ा आदमी जो राष्ट्रपति बोलते हैं, वो जो छेड़ के 2 साल हुआ, 2 साल में उन्होंने 40,000 झूठ तो बोल चुके हैं, वो भी पता लग जा रहा अपने को। और एक बात ठीक है, आज आज जो भी हो रहा एक सेकंड में अपने को पता लग जा रहा। इतना जब होने के बाद एक चीज से बहुत ही तकलीफ हो रहा प्रीत जी, क्या बोलो तो, अपने घर में जो शादी होता था पहला, कार्ड लेके जाके घर पे दे के, आप सब्जे ने आना, हमारा बच्ची का शादी है, सब्जे ने आप अटेंड होना चाहिए बोल के अपन रिक्वेस्ट से, मतलब बहुत मर्यादा का पूर्वक से अपन इन्वाइट करते थे
1: जी।
0: आज क्या हो गया, उसको कार्ड को फोटो निकाल के व्हाट्सअप बोल रहे, व्हाट्सअप, वो मीनिंग भी कितना अच्छा कैसा लगा है कि वो मतलब व्हाट्सएप,
1: व्हाट्सएप कंपनी ने व्हाट्सएप, हाँ जी समझ रहे हो।
0: वो व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप का हिंदी में मतलब सुनाइए मेरे प्रीत जी एक बार,
1: क्या कर रहे हैं आप? क्या चल रहा है?
0: बस यही सोचो, बस अपन क्या कर रहे हैं व्हाट्सएप के संगात,
1: जी जी,
0: हर एक चीज को अपन क्या कर रहे हैं वही अनुमान में जी रहे हैं अपन।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: स्मार्टफोन के वजह से व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं अपन, अपने को भी पता नहीं हो रहा व्हाट्सएप, मतलब
1: जी।
0: एक चीज हो रहा है, मगर एक बात तो कहता हूँ मैं प्रीत जी, घर पे बैठ के आप आराम से कमा भी सकते हैं। आज जो हूँ मैं मेरा खुद का ही बोल रहा हूँ, मैं घर पे बैठ के मैं कम से कम एक 5-6-10 स्टॉक्स तो मैं डेली ट्रेड कर ले सकता हूँ इंट्राडे में, और सोना चांदी का भी इंट्राडे में कर लेता हूँ, जो भी है, जो भी हो सकता मैं कमा रहा बोल के मेरे को एक क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन है।
1: ओके ओके,
0: बहुत स्मार्टफोन के वजह से
1: जी सर,
0: फिर स्मार्टफोन के वजह से उसको मैं जो भी वो इन्वाइट करे उसको मैं उनको सलाम नहीं, उनको प्रणाम करता हूँ और परनों का उनका चरण को भी स्पर्श करता हूँ
1: जी सर,
0: ये चीज जो निकले उनको।
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर,
0: प्लीज जी,
1: थैंक यू सर,
0: ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच,
1: यू टू सर, थैंक यू। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात कही, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अच्छी बताई जो मुझे फर्स्ट टाइम पता चली। वी हैव ऐप्स ऑल्सो जिससे ये पता चलता है कि नोट कौन सा है, 100, 500, सच अ ग्रेट थिंग राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो,
2: गुड आफ्टरनून मैडम।
1: वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप, आपका नाम?
2: मेरा नाम नरसिम्हा रेड्डी मैडम, प्रेमा के पेट राजेंद्र नगर।
1: हाँ जी सर, सो क्या कहेंगे
2: मैडम आप?
1: मैं एकदम सही हूँ सर, एकदम बढ़िया, आप लोगों के आशीर्वाद से।
2: हाँ मैडम,
1: हम
2: एकदम हेल्दी है मैडम, हेल्दी एकदम हेल्दी है,
1: नाइस।
2: ओके मैडम,
1: सो सर क्या बोलेंगे
2: के बारे में बोले ना मैडम?
1: जी सर
2: बिल्कुल, फोन अगर आज के जमाने में ये फोन नहीं तो कुछ भी काम नहीं चलता मैडम।
1: जी सर,
2: ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बुरी चीज भी उसमें एक दो है, उसमें 90% तो अच्छा है, एकदम बढ़िया है। आप जैसा मुरली सर बोले, जो मेरे को ताजी बोल रहा जो नोटा गिनती बोल रहे ना मैडम मशीन पे, मालूम पड़ता, ये मेरे को याद आया, हमारे घर में हमारे दादी माँ थी, वो बचपन से अंधी है वो, लेकिन नोटों को एक बार बता दिए, ऐसा बोलो तो उनको ऐसा ऐसा देख के हमको वो घर में लेना देना उनके हाथ में था, एक पैसा दो पैसा जब था ना उस टाइम की बात बता रहा हूँ, वो बता दी थी ये है ये नोट है
1: जी जी।
2: आज ये मुरली साहब जो बोले कि मैं पहचान सकता हूँ, बोलते मैं यही एक दिन पूछने वाला था मुरली जी से, जब आप फोन करते ना साहब नंबर कैसा मिलाते, आपको नहीं दिखता ना तो कैसा मिलाते, बोल के अगर मौका है तो पूछूंगा सोचा था। आज पता चला कि फोन के वजह से उन्होंने ये स्मार्टफोन से ये सब पता चल रहा बोल के।
1: जी सर जी सर,
2: ये सब ठीक है, ये सब ठीक है सब।

0: ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన కింద సుమారు 60 కోట్ల మంది ప్రజలు 5 లక్షల వరకు ఉచిత చికిత్సకు అర్హులయ్యారు. ఇప్పటి వరకు 12 కోట్లకు పైగా ఉచిత చికిత్సలు అందించడం ద్వారా పేద కుటుంబాలకు వైద్య ఖర్చులలో సుమారు 2 లక్షల కోట్లు ఆదా అయ్యాయి. ఆయుష్మాన్ యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ రోజే ఆయుష్మాన్ కార్డును పొందండి. మరిన్ని వివరాల కోసం 1455555కు కాల్ చేయండి.
1: वेल, समय हो चुका है कि अब आप सभी से विदा ली जाए, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट आरजे हैं वो बिल्कुल रेडी हैं अपने शो के लिए एंड यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन हिज शो एज वेल. एंड आज हम बात कर रहे थे कि स्मार्टफोन से पहले हमारी लाइफ कैसी थी. तो जाते जाते आई थिंक मैं अपनी एक टिप्पणी ज़रूर देना चाहूँगी कि लाइफ में हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं, बट हमें उसे कैसे लेना है वो हमारे ऊपर होता है. पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, हर एक सिक्के के हर एक लाइफ में दो पहलू होते हैं. व्हेन देयर आर पॉजिटिव्स देयर आर नेगेटिव्स एज वेल. सो अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, किसी रील में देखते हैं एंड हम उसे सच मानने लगते हैं विदाउट इवन नोइंग आर एंटायर हिस्ट्री. सो बिफोर वी सपोर्ट एनीथिंग, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, वी शुड फर्स्ट नो अबाउट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग एंड देन वी शुड कंक्लूड. भाई, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें अपने विचार पेश करने की बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन वो विचार ऐसे हों जो किसी और को हार्म ना करें. एंड आपके विचार, अगर आप किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो आपसे जुड़े हुए जो 100, 200, 500 लोग हैं वो लोगों तक भी पहुंचेंगे. तो आप क्या बोलते हैं, क्या शेयर करते हैं, क्या सोचते हैं, हर एक चीज़ अगर लाइफ में आप फिल्टर करके डालना चालू करें, पोस्ट करना चालू करें, दैट वुड बी रियली ग्रेट. एंड जैसे बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, अगर हम बात करें तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें सीखने मिलती है, बहुत सारी न्यूज़. शायद मैं उनमें से एक हूँ, मैं बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं देखती थी, लेकिन इंस्टाग्राम में इतनी सारी चीज़ें आने लगी है, रील्स में छोटी छोटी चीज़ें इतनी आने लगी है कि इट यू नो फोर्सेस अस टू मेक अस अंडरस्टैंड कि भाई हिस्ट्री क्या है. आप और जानने के इच्छुक होते हैं, तो अगर आपके लिए कोई चीज़ ईजिली अवेलेबल है तो मेक द मोस्ट ऑफ इट इंस्टेड ऑफ यू नो नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली. आई थिंक इट वुड एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू इट. इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा. आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड येस मेक श्योर कि आप जो भी सोशल मीडिया से अपने अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो इतनी अच्छी हो कि आपके आजू बाजू वाले लोगों को पॉजिटिवली इफेक्ट करे. विदाउट नोइंग एनीथिंग, डू नॉट सपोर्ट एंड डू नॉट डू एनीथिंग.

0: दिस इज इट फ्रॉम माई एंड नाउ बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सुनते रहिए. दिस वॉज हेलो रेनबो एंड दिस इज योर आरजे प्रीत साइनिंग ऑफ ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो एफ एम 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. बाय बाय.
1: सारे गामा का.

FM 101.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 और 17 सेकंड हो रहे हैं और अब पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: नहीं मानती एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज के नकलो हमल में कभी कभी तन्हा एक चूंटी घंटों मसरूफ रहती है। ये इस मखलूक में मेहनत कशी और फालियत के साथ खुद एतमादी के मौजूदगी की एक दलील है जो कि हम इंसानों में शाज़ और नादर ही नज़र आता है। लिहाजा जब भी चूंटी नज़र आए तो चूंटी नन्ही सी मखलूक हमें जो पैगाम दे रही है उस पर गौर करने की कोशिश की जानी चाहिए और जो उसूल उसने अपनाए हुए हैं उन उसूलों पर अमल करने की कोशिश की जानी चाहिए।
1: सामीन, हर्फ ताबिंदा के तहत पेश की गई इस खूबसूरत तहरीर ने हमें ये एहसास दिलाया कि कुदरत की हर मखलूक अपने अंदर एक पैगाम समोए हुए। चूटी जैसी नन्ही सी मखलूक भी हमें नज़्म ज़ब्त, इत्तेहाद, खैरख्वाही, ज़िम्मेदारी, मेहनत और खुद एतमादी जैसे औसाफ़ इख्तियार करने की दावत देती है।

हुआ है। किसानों के मसाइल कुछ हद तक हल हुए हैं। बारिश का जो इंतजार होता था और जो कहत की सूरत हाल पैदा होती थी, उस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये पता लगाया जाता है जदीद मशीनों से कि कब बारिश होगी और कब नहीं होगी। और इसी के साथ जो नई मशीनें बनाई गई है, उनके जरिए से नहरों के पानी को, तालाबों के पानी को खेतों तक पहुंचाने की सहूलत भी फराहम की जा रही है। और इस वजह से अब किसान पहले की तरह सिर्फ मौसम में बरसात पर मुनहसर नहीं है, वो सिर्फ अपनी फसलों के लिए बरसात के मौसम का इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि हर साल वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से फसलें उगा रहा है और पानी का भी इंतजाम वो जदीद

नहरों के पानी को, तालाबों के पानी को खेतों तक पहुंचाने की सहूलत भी फराहम की जा रही है, और इस वजह से अब किसान पहले की तरह सिर्फ मौसम बरसात पर मुनहसर नहीं है। वो सिर्फ अपनी फसलों के लिए बरसात के मौसम का इंतज़ार नहीं कर रहा है, बल्कि हर साल वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से फसलें उगा रहा है, और पानी का भी इंतज़ाम वो जदीद मशीनों के ज़रिए कर रहा है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां साइंस और टेक्नोलॉजी की मरहूने मिन्नत है। सनत में खुदकार मशीनों ने पैदावार में तेज़ी दिखाई है और मियार भी बहुत बढ़ा दिया है। खलाई तहकीक के ज़रिए सैयारों, सितारों और कायनात के बारे में नई नई मालूमात हासिल हो रही है। हमें पता चल रहा है कि कई लाखों नूरी साल के फासले पर और दूसरी बड़ी कहकशाएं मौजूद है, जहां और भी सितारों की दुनिया, सैयारों की दुनिया आबाद है। ये सारी मालूमात हमें जदीद दौर में पता चल रही है, और इससे हो क्या रहा है, हमारे वक्त की बचत हो रही है, मेहनत की बचत हो रही है, और ख़ासकर जो बीमारियों का बेहतर इलाज है वो बहुत इंसानी ज़िंदगी को बचा रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, और हमारी जो औसत उम्र थी इंसानों की उसमें बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। मियारी तालीम तक आसान रसाई हो रही है, जहां लड़कियों का घर से बाहर जाना और तालीमी इदारों तक पहुंचना, वहां तालीम हासिल करना एक बहुत नामुमकिन सा मुश्किल ख्याल लगता था, आज वही लड़कियां डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन कोर्सेज कर रही हैं और समाज में अपना एक मुकाम बना रही हैं। मुआशी तरक्की और रोज़गार के नए नए मौाक़े हासिल हो रहे हैं। मस्नूई ज़हानत ने जहाँ काम को आसान बना दिया है, वहाँ रोज़गार के नए मौके भी दिए हैं। ये ज़रूर डर पैदा हो रहा है, जिस तरह कंप्यूटर की इजाद से पहले ये डर था कि रोज़गार के मौाक़े छीन जाएंगे और बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाएगी, अब एआई के ज़माने में भी इस तरह के सवाल जन्म ले रहे हैं कि एआई जब इतने सारे काम लोगों के कर रहा है, तो फिर कैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्या बेरोज़गारी और नहीं बढ़ जाएगी। लेकिन हम इसी टेक्नोलॉजी की मदद से रोज़गार के नए मौाक़े भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर नक़ल व हमल और मवासिलात की सहूलत हमें हासिल हो रही है। लेकिन इसके साथ हमें कुछ बातों पर भी तवज्जो देनी चाहिए, और इस बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान की बेहतर ज़िंदगी के लिए मददगार एक टूल है, एक मदद करने वाला साथी है, और इसका इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत, उसके मियार और उसकी बुलंदी को बढ़ाना है, न कि उससे नुकसान पहुँचाना। तो अब हम जानेंगे कि इस खुदकार टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस किस्म के नुकसानात का अंदेशा बना रहता है। तो सबसे अहम चीज़, जहां हमने साइबर टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, फासलों को कम किया है, रोज़गार के नए मौाक़े हासिल किए हैं, अपनी तालीम और मालूमात में बहुत बे इंतहा इजाफा कर रहे हैं, साथ ही कुछ ऐसे मुंतशिर जहन है जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी करते हैं और साइबर क्राइम भी, यानी कि साइबर जराइम भी वो अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए, ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए और ऐसे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के साइबर जराइम रोके जा सके। फिर दूसरी चीज़ ये हो रही है कि जो जदीद मशीनें बन रही है, उससे माहौलियाती आलूदगी का ख़तरा भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम पैरेलल यानी के मतवाजी तौर पर देखें, तो ई निज़ाम जो शुरू हो रहा है, जैसे ई ऑटो रिक्शा है या फिर जो करंट की बाइक्स है, उनसे हम इस पर किसी हद तक काबू पाने में कामयाब हो रहे हैं। खुदकार निज़ामों की वजह से बाज़ शोबों में बेरोज़गारी बढ़ने का अंदेशा है, यानी कि जो लोग समाजी तौर पर खुद को बहुत पीछे रखे हुए हैं, तो उन लोगों के रोज़गार पर एक सवाल उठ जाता है। और सबसे अहम चीज़, जो आज छोटे बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग शख्स पर भी लागू होती है, वो है मोबाइल और इंटरनेट के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की। तो इस वजह से ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल और इंटरनेट की वजह से एक तरह से एडिक्शन पैदा हो गया है, यानी कि हमारी नौजवान नस्ल को हो या फिर ऐसे लोगों को जिनके पास

0: जिंदगी का मकसद बहुत ज्यादा अहम नहीं है, मोबाइल और इंटरनेट उनके लिए एक आदत बल्कि एक लत बन गई है जिससे वो छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें जहनी और जिस्मानी मसाइल का ना सिर्फ सामना करना पड़ रहा है बल्कि वो दूसरों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो मसनवी ज़हानत, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और काबिले तजदीद तवानाई आने वाले बरसों में दुनिया को मज़ीद तब्दील करेगी। तो हमारा काम यही है कि इन शोबों में तहकीक इंसान की ज़िंदगी को पहले से भी ज़्यादा आसान, आरामदा और राहत बख्श बनाए, और इसमें जो भी गलत रवैये है उनका इस्तेमाल ना किया जाए। अगर उनका इस्तेमाल जिम्मेदारी, अखलाकियात और इंसानियत की भलाई के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये दुनिया को बहुत ज़्यादा खुशहाल, महफूज और तरक्की याफ्ता बना सकती है। लेकिन अगर यही गलत इस्तेमाल इसका होता है तो इसकी हम खतरनाक मिसाल माजी में देख चुके हैं, जैसे कि एटम बम की मिसाल है। तो ये जो खतरनाक इस्तेमाल हुआ था टेक्नोलॉजी का, उसकी सज़ा आज की नस्लें भी भुगत रही है। तो इन हथियारों से, जदीद टेक्नोलॉजी के इन हथियारों से जो इंसानी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, मासूम जानों को छीनते हैं, उन सब से हिफाजत होनी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला मकसद इंसान की तरक्की और भलाई, फलाह व बहबूदी हो, ना कि उसकी ज़िंदगी को तबाह व ताराज करना हो। साइंस हमारे लिए एक मददगार हो, ना कि वो दुनिया पर हुकूमत करने का एक जरिया हो। तो इसी के साथ हम ये कहते हुए अपना मज़मून ख़त्म करेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानी तरक्की का बुनियादी सुतून है, और ये जितना मज़बूत होगा इंसानी तरक्की की बुनियाद भी उतनी ही मज़बूत होगी।
1: समीन, बेदारी कायनात के तहत साइंस और टेक्नोलॉजी के मौजू पर मोहतरमा डॉक्टर गौसिया बानो की ये मालूमाती पेशकश यकीनन हमारे इल्म में इजाफे का बाइस बनी। साइंस हमें कायनात के राज समझने का शऊर अता करती है, जबकि टेक्नोलॉजी इन्हीं इल्मी बुनियादों को इंसानी फलाह और सहूलत में ढालती है। आज इलाज से लेकर तालीम तक, ज़राअत से सनअत तक और मवासलात से खलाई तहकीक तक, हर मैदान में होने वाली तरक्की इस बात का सबूत है कि इल्म, तहकीक और इख्तिरा ही रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। इसलिए ज़रूरी है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को महज सहूलत का ज़रिया न समझें, बल्कि उन्हें ज़िम्मेदारी, तहकीक और इंसानियत की खिदमत के लिए मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। मोहतरमा डॉक्टर गौसिया बानो का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी जामे और मालूमाती पेशकश के ज़रिए इस अहम मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं से हमें रोशनास कराया।

समीन, और अब वक्त हुआ चला है हमारे दिलकश, ये यादगार और महफिल को मज़ीद खुशगवार बनाने वाले प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जागा। सामीन, मौसीकी दिल को सुकून देती है और अच्छी सेहत ज़िंदगी को खुशियों से भर देती है। इसीलिए आज के इस खसूसी प्रोग्राम में खूबसूरत हिंदी फिल्मी नगमों के साथ हम एक अहम आलमी दिन, आलमी यौम हेपेटाइटिस के हवाले से भी चंद मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। सामीन, हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में आलमी यौम हेपेटाइटिस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों में हेपेटाइटिस यानी जिगर की बीमारी के बारे में आगाही पैदा करना, बरवक्त जांच, एहतियाती तदाबीर, वैक्सीनेशन और इलाज की अहमियत को उजागर करना है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस मौके पर सेहत से मुतालिक इदारे आगाही रैलियाँ, सेमिनार, मुफ्त जांच कैंप और अवामी मुहिमात मुनक़िद करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मुतालिक दुरुस्त मालूमात हासिल करें और अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। तो आइए मौसीकी और आगाही के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करना ही

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। सामीन, आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मशकूर अहमद। सामीन, नगमों की इस खूबसूरत महफिल में आज हम बात कर रहे हैं आलमी यौम हेपेटाइटिस की। शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हेपेटाइटिस की कई अकसाम हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। इनमें बाज़ से वैक्सीन के ज़रिए बचाव मुमकिन है, जबकि बाज़ के लिए बरवक्त जांच और मुनासिब इलाज इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए सेहत के मामले में लापरवाही के बजाय एहतियात और बरवक्त मुआयना इख्तियार करना दानिशमंदी है। अब आइए, ज़िंदगी के फ़लसफ़े को खूबसूरती से बयान करता है ये नगमा, आइए सुनते हैं।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा। सामीन, नगमों के दरमियान आज हमारी गुफ्तगू आलमी यौम हेपेटाइटिस के हवाले से जारी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस की बाज़ अकसाम इब्तिदा में वाज़े अलामात ज़ाहिर नहीं करती, इसलिए वक्तन फवक्तन तिब्बी जांच बहुत अहम समझी जाती है। बरवक्त तशखीस न सिर्फ इलाज को आसान बनाती है बल्कि मुस्तकबिल में पेचीदगियों से भी बचा सकती है। और अब वक्त है इस खूबसूरत नगमे का, आइए सुनते हैं।

सामिन, आप सुन रहे हैं गीत सुरेले गाता जा, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मशकूर अहमद। आज आलमी यौम हेपेटाइटिस के मौके पर हम ये भी याद रखें कि सेहतमंद जिंदगी सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि एहतियात से भी वाबस्ता है। साफ सुथरी आदत, महफूज तिबी तरीक़ों पर अमल और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वैक्सीनेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक छोटी सी एहतियात मुस्तकबिल की बड़ी परेशानी से बचा सकती है। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा। सामीन, आज की इस महफिल में हम नगमों के साथ आलमी यौम हेपेटाइटिस का पैगाम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिगर हमारे जिस्म का एक नहायत अहम उज्व है, इसलिए मुतवाजन ग़िज़ा, साफ पानी, बाकायदा वर्जिश और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाना जिगर की हिफाजत के लिए नहायत ज़रूरी है। अब पेश खिदमत है ये खूबसूरत सा नगमा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं गीत सुरेले गाता जा। सामीन, आलमी योम हेपेटाइटिस का एक अहम मकसद नौजवानों में भी सेहत के बारे में शोर पैदा करना है। सेहतमंद आदत, बाकायदा तिबी मशवरा और ज़िम्मेदारान तर्ज ज़िंदगी न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल को भी बेहतर बनाते हैं। आइए इसी उम्मीद के साथ सुनते हैं खूबसूरत सा नगमा।

सामिन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम गीत सुरीले गाथा जामे एक बार फिर खैर मकदम है। नगमों की इस महफिल के साथ आज हम आलमी यौम हेपेटाइटिस का पैगाम भी आम कर रहे हैं। दुनिया भर में इस दिन आगाही मुहिमात, मुफ्त तिब्बी जाँच और मालूमती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं ताकि हर शख्स अपनी सेहत के बारे में बाखबर रह सके। अब सुनिए ये दिलकश नगमा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। सामीन, आप सुन रहे हैं गीत सुरेले गाता जा। सेहत एक ऐसी दौलत है जिसकी हिफाजत हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आलमी योम हेपेटाइटिस हमें यही सबक देता है कि एहतियात, बरवक्त तशखीस और इलाज के ज़रिए न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी महफूज बनाई जा सकती है। आगाही फैलाना भी एक अहम समाजी खिदमत में।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं गीत सुरेले गाता जा। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मशकूर अहमद। सामीन, नगमों की ये खूबसूरत महफिल अपने पूरे रंग में है और इन्हीं दिलकश नगमों के दरमियान हम बात कर रहे हैं आलमी यौम हेपेटाइटिस की। इस दिन का मकसद सिर्फ बीमारी से आगाह करना ही नहीं बल्कि लोगों को ये एहसास दिलाना भी है कि सेहत एक ऐसी दौलत है जिसकी हिफाजत हर इंसान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुतवाजन ग़िज़ा, साफ पानी, बाकायदा वर्जिश और बरवक्त तिब्बी मुआयना एक सेहतमंद ज़िंदगी के बुनियादी सुतून हैं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद अच्छी आदतें अपना लें तो न सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने ख़ानदान को भी कई बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: अगर सच इतना जालिम है तो हमसे झूठ ही बोलो, हमें आता है पतझड़ के दिनों गुलजार हो जाना। जिंदगी में हर सच हर वक्त कहना जरूरी नहीं होता। ऐसा सच जो किसी का दिल तोड़ दे, उम्मीद छीन ले या बेवजह तकलीफ पहुंचाए, उसके इजहार में नरमी, हिकमत और मुनासिब वक्त का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ इंसान को भी इतना मजबूत होना चाहिए कि हालात चाहे कजा जैसे हों, वो सब्र, हौसले और मुस्बित सोच से अपनी जिंदगी को फिर से बहार बना सके। इसीलिए हमेशा सच बोलें, मगर हिकमत और हुस्न अखलाक के साथ। दूसरों के जज्बात का एहतराम करें, मुश्किल हालात को अपनी तरक्की का जरिया बनाएं। मायूसी के मौसम में भी उम्मीद के फूल खिलाना ही कामयाब इंसान की पहचान है। जिंदगी का हुस्न यही है कि इंसान तल्क हकीकतों में भी सब्र इख्तियार करे और दूसरों के लिए ऐसा लहजा अपनाए जिससे दिल टूटने के बजाय संवर जाए।
1: समीन, अभी आपने पैगाम शब्द जनाब जैदी साहब की आवाज में समाप्त फरमाया। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान मशकूर अहमद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और तवज्जो का बेहद शुक्रिया।

इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:59 हो रहे हैं और कुछ ही देर में देरी से हिंदी और अंग्रेज़ी खबरें सुनाई जाएंगी।

लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच

आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार. थैंक यू.
1: और सबसे पहले नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड मार्जिनली डाउन. सेंसेक्स ड्रॉप्स 70 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्ड एट 23,985. India's industrial output grows by 7.3% in June this year, and most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 70 अंक की सुस्ती और निफ्टी 23,985 पर बंद हुआ. भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर जून महीने में 7.3% की बढ़त और अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में सबसे ज्यादा लगभग 11% का नुकसान.

0: opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 70 अंक नीचे आकर 76,766 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 11 अंक फिसलकर 23,985 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.1% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप में 0.2% की सुस्ती आई. इससे पहले एशियाई शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण बाजार आज सपाट स्तर पर खुले. दोनों प्रमुख सूचकांकों में उतार चढ़ाव तो होता रहा और अंतर्दिवसीय सत्र के दौरान वे एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower today. Sensex dipped by 70 points to close at 76,766. Nifty dropped by 11 points to settle at 23,985. The broader market at the NSE displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index rose nearly 0.1%, while the small-cap 100 index fell over 0.2%. Earlier, the markets opened on a flat note, tracking weak cues from the Asian markets. Both the benchmark indices swung between gains and losses and traded within a narrow range during the intraday session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टीसीएस लगभग 4.5% ऊपर आ गया. एटर्नल के शेयर 4% चढ़ गए और टेक महिंद्रा में लगभग 3.9% की बढ़त दर्ज हुई. दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 7% लुढ़क गए. बीएल में 4.4% की गिरावट आई और एनटीपीसी के शेयर लगभग 2% नीचे आ गए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, the capital goods dropped 2.4%, power dipped almost 2.4%, and utilities fell more than 1.7%. In contrast, focused IT advanced over 3.4%, IT rose 3%, and realty gained 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,629 companies declined, 1,626 companies advanced, and 169 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 4 पैसे मजबूत हुआ और 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.85 रुपए पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: आज के बाजार पे अगर नजर डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला. एक मामूली गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं, लेकिन एशियाई बाजारों की तरफ देखें तो बड़ा गहरा असर हमें देखने को मिला तमाम चीजों का. तो इसमें मुनाफा वसूली का कितना योगदान रहा या फिर जो जियो पोलिटिकल स्थितियां हैं उनका योगदान ज्यादा था या कुछ अन्य?
2: देखिए, अगर वो भारत की अगर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो भारत की जो आज की जो स्टॉक मार्केट में जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अगर आप पहले सत्र 2-3 सत्र में देखें उसी आज के में तो उनमें काफ़ी पॉजिटिव था. पर मुझे असेसमेंट मेरा ये है कि जो एशियन मार्केट में पर्टिकुलरली जो कोरियन मार्केट में जो चिप मेकर्स के साथ जो हंगामा जो हुआ, चिप मेकर्स के ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई है लोगों ने एशियन मार्केट्स में ज़्यादातर, उसका प्रभाव थोड़ा बहुत हमारे मार्केट में भी आया है. और उसीलिए जो गेंस फर्स्ट हाफ में थी वो गेंस न्यूट्रलाइज होकर थोड़ी बहुत मार्जिनल लॉस में 70 पॉइंट जैसे आपने कहा उन सेंसेक्स में हुआ है. पर देखने वाली बात यह है कि कल के जो रिकवरी हुई, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और आज के जो तेल की जो दाम गिरने के बाद भी स्टॉक मार्केट में जो एक स्टेबिलिटी जो आई है पर्टिकुलरली इन द आईटी सेक्टर में वो नोटिसेबल है. और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंटरनल जो एक जो पुल है इंटरनल मार्केट का वो ग्लोबल डेवलपमेंट को ऊपर ओवरकम करके वो दिखा रहा है.
1: पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो लगातार 5 दिन तक गिरावट आई. कल एक बढ़िया दिन देखने को मिला कारोबार के नज़रिए से.

0: evidence by the FCNR deposits as well. While at the same time, the Asian markets, the AI related boom is showing that those shares are actually overvalued. So clearly, this is a valuation story going on right now with IT and how the dollar is performing.
1: To a great extent, yes. Don't underestimate also the role that the crude oil prices have played here. And the crude oil prices have also softened considerably in the last couple of days. So that has also contributed to India's external sector scenario or the outlook.
0: Was there a profit booking in the capital goods sector, which fell by 2.4%? Because there is a leading company in the capital goods sector which has given good numbers in terms of revenue, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, margin, order book and net profitability.
1: Whenever a company, in this case the company that you are referring to, if they come up with decent results, profit booking is par for the course. So I won't be ruling that out.
2: AKB, अगर इस पूरे महीने हम जुलाई के महीने में नजर डालें तो एक सेक्टर रोटेशन हमें नजर आया है, चाहे FIIs के नजरिए देखें या DIIs के नजरिए देखें, एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है. और ऐसे समय जब मॉनसून हमारे यहाँ पर, अभी मॉनसून का सीजन है और तमाम चीजें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि ये जो चेंज आ रहा है ये निवेश की दृष्टि से सही है या इसका लोगों को फायदा होगा जो मुनाफा वसूली करना चाहते हैं?
1: देखिए, बहुत सारे IPOs आने वाले हैं, तो जो आप बिकवाली की बात कर रहे हैं IPOs के लिए भी हो सकता है, नंबर वन. नंबर टू, जो मॉनसून की जो बात आपने की, मॉनसून की जो हमारी जो डेफिसिट है वो, हालांकि वो 40% डेफिसिट अब नहीं रही है, अब घटकर 14% हो गई थी, फिर अब बढ़कर 18% हो गई है. तो मॉनसून में जो एग्रीकल्चरल की जो एक इम्पैक्ट होने वाली थी वो अभी भी जो लगता है कि थोड़ी बहुत सीमित है. और तीसरी बात ये है कि जो हमारी जो IT सेक्टर जो है उसमें जो एक जोश दिख रहा है वो FIIs को अच्छा लग रहा है. इसीलिए अगर आप जुलाई का पूरा अगर ट्रेंड देखेंगे, FIIs
2: वही पर आ रहा था,
1: उतनी तरह पुल आउट नहीं किया उन्होंने. उन्होंने इस मार्केट में वो रहने का तय किया. हालांकि उनको ये मालूम है कि फेड में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और शायद यही मौका है कुछ पैसे बनाने का, क्या करने का. तो ये जो मतलब ये बोलने का मेरा तात्पर्य यही था कि ये एक टेम्पोररी चीज़ है, क्योंकि ज्यों ही आप देखेंगे फेड पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तभी ये FIIs का रुख शायद बदल सकता है. तो कितने दिन तक ये टेंडेंसी, ये सेंटिमेंट बरकरार रहे, उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह.
2: करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते तो फेड का जो भी रिजल्ट होगा वो कितना इम्पैक्टफुल आपको लगता है?
1: इम्पैक्टफुल तो जरूर होगा हमारे स्टॉक मार्केट में. FIIs से पुल आउट जरूर होगा और स्टॉक मार्केट को उसकी जो डेवलपमेंट जो है, इम्पैक्ट है, उसको संभालना पड़ेगा.
2: जी, आगे बढ़ते हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं. कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 9.8% से ज्यादा बढ़कर 17,529 करोड़ रुपए हो गई है. वहीं वार्षिक आधार पर कंपनी का सकल लाभ 3% घटकर 2,673 करोड़ रुपए रह गया है.
0: AKB, my question is on the FMCG sector. We're seeing that the rains are back in the month of July after deficient rains in the month of June. We are seeing in agriculture the sowing of kharif crops, paddy, pulses, oil seeds, cotton and sugarcane. So when is the josh going to come back in the FMCG sector, sir?
1: It's too early, number one, because the demand outlook is still very muted, and if rains are so far have held up, but it remains to be seen that how long these rains outlook continues to give you confidence over agricultural output remaining what they were originally projected. So FMCG sector is very, very sensitive to how the rural economy fares. So the rural economy does not do well, but if the manner in which it is happening so far, I think rural economy will not be largely affected. So to that extent, FMCG sector's outlook is not that bad. Josh may not come back, but the outlook is not that bad.
0: In more news, Larsen & Toubro Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from

0: operations rose nearly 6.7% year-on-year to 67,942 crore rupees. The firm's net profit increased by around 14% to 4,123 crore rupees on an annual basis. AKB, we earlier discussed that, you know, capital goods sector actually fell by 2.4% in trading today, the Nifty index. Is it because engineering goods to some extent are being hit by all these protectionism by the US market in terms of its tariff policy? What is going to be the likely outlook for capital goods? Because as far as our net exports are concerned, one of the chief contributors is our exports of capital goods.
1: No, I am not at all that defensive on the capital goods sector, whatever may have happened in the stock market today. As long as the infrastructure sector is doing well, as long as the construction sector, and the sign of construction sector doing well is the Larsen & Toubro results today, is doing well, I don't see the capital goods sector faring poorly. So if you are betting on the capital goods sector, then I think you are betting the right sector.
2: आगे बढ़ते हैं. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस संबंध में आंकड़े जारी किए हैं. इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था. हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई. बिजली और गैस आपूर्ति में 10.6% तथा विनिर्माण में 7.8% की बढ़त हुई है. जलापूर्ति, सीवरेज और कचरा प्रबंधन में 6.1% की तेजी आई. वहीं खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है. एकेबी, ये जो आंकड़े आए हैं IIP के हमारे सामने हैं, किस तरह से इन्हें आप देखते हैं, खासतौर पे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भारत की जो स्टैंडिंग पोजीशन है राइट नाउ, उसके आधार पर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें?
1: देखिए, इसमें अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारी इकोनॉमी की जो स्थिति है. जून का महीने का नंबर है ये
2: जी.
1: और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है 10%. और अगर आप हमारी ट्रांसमिशन सेक्टर की परफॉर्मेंस, पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस जून के महीने में देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ने के बाद भी बावजूद जो जिस तरह से पावर सप्लाई, जनरेशन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एकदम इंटैक्ट रही, उसी का प्रतिफलन आप देख रहे हैं कि 10.6% का ग्रोथ आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो 7.8% ग्रोथ जो हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर IIP का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है
2: जी.
1: तो मुझे लग रहा है कि ये जून के महीने में जो बरसात के आने के पहले जो एक हम एक सर्ज देखते हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख रहे हैं. और बाकी जो माइनिंग एंड क्वेरिंग में है, वो उसमें ज़रा मेरे ख्याल से शायद जून के महीने में लास्ट ईयर बहुत हाई लेवल बेस था, उसी का बेस इफेक्ट दिख रहा है. पर ऑन द होल जो परफॉर्मेंस IIP का जो परफॉर्मेंस है, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी आशाजनक.
2: AKB, इसमें पावर सेक्टर पे अगर हम नज़र डालें तो शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चढ़ते हुए ग्राफ में नहीं देखी गई है. लास्ट कुछ मंथ की हम बात करें, कुछ दिन की बात करें, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
1: जो ये जो पावर की जो IIP में जो आप देख रहे हैं, वो पावर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं
2: जी.
1: पर मैं समझता हूँ कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक मार्केट में जो है, ज़्यादातर कंपनियाँ वो पावर इक्विपमेंट और पावर सप्लाई में ज़्यादा वो है. तो उनका जो नज़रिया या उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिफरेंट है, और ये जो है सप्लाई और प्रोडक्शन के ऊपर वो है.
0: जस्ट माई क्वेश्चन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव द फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई PMI, which is at 53.9, and June was slightly higher, 54.2. But right now, the government of India is also giving a massive push to manufacturing. For instance, we have the news on the toy industry. The Commerce and Industry Ministry has said that we are pushing for a 5% share of the global market when it comes to toys. Now, it's one of many manufactured items. How do you see this push towards China Plus?
1: Well, I think that the China Plus strategy has not really paid us off in a big way. Where it has paid off is only in one sector, which is in the mobile phone manufacturing sector, through the Apple's mobile phone manufacturing, through Tata Electronics, and even the Chinese, the Taiwanese companies perform.

0: factor is here. So I think the manufacturing sector's performance is largely limited to a few sectors, and it is not widespread, and it is very necessary that the manufacturing sector growth not just shows up with a 7.8% growth, it should be in double digits. So this is, that is only will give you a kind of employment growth that this country needs.
1: अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10.8% नीचे आ गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच में निवेशकों ने काफी टेक शेयर बेचे. इससे पहले इस सूचकांक में 8% की अधिक गिरावट आई थी जिसके कारण कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी. ये इस साल 7वीं बार था जब एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लगाया. ताइवान का ताइक्स आज 4.6% से ज्यादा टूट गया. जापान का निक्केई 225 3.9% से अधिक नीचे आ गया. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 1.2% लुढ़क गया. हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी तरफ हांगकांग का हैंगसिंग इंडेक्स आज 0.4% के लाभ में रहा. एकेबी आज की बड़ी बात यह रही कि कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी. लेकिन जिस तरह से गिरावट हमने देखी, ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिरावट, एक बड़ा नंबर है. बहुत समय बाद यह नंबर देखने को मिला, तो इसे मुनाफा वसूली की वजह माना जा सकता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेक्स सेक्टर में अब कोई बड़ा करेक्शन आ चुका है, आने वाला है?
0: ये मुनाफा वसूली नहीं है. ये जो एग्जुबेरेंस जो था, ओवर कॉन्फिडेंस जो था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इन्वेस्टमेंट पे ऊपर, स्पेशली जो चिप मेकिंग की जो डिमांड जो लोग कह रहे थे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स को बनाना पड़ेगा और चिप की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी. पिछले कई दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिमांड की जो प्रोजेक्शन जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी रिविजन हुई है. उस रिविजन से जो जिस डिमांड के तरीके स्टॉक मार्केट में चिप मेकर की जो प्राइसेस बढ़ रही थी, उसमें एक धक्का आया है. और मैं समझता हूँ कि ये एक रियलिटी चेक है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड स्टॉक्स और चिप मेकिंग स्टॉक्स के ऊपर. और द कोरियन मार्केट जो बहुत ज्यादा इसके ऊपर निर्भरशील है, उनकी मार्केट, उसको ये पहला धक्का मिला है.
2: मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 1.7% डाउन एट $86.85 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड. West Texas Intermediate WTI crude was trading over 1.4% down at $81.41 per barrel when reports last came in. AKB, all the news is centered around the Strait of Hormuz, where 20% of oil and gas flows through. But there is also the Red Sea. There is also action in the Black Sea. How do you see oil prices in the short to medium term, especially with India's reliance on imports?
0: Well, it's very difficult to estimate or project what kind of trajectory the Brent crude oil prices or the West Texan crude oil prices will take, for the simple reason that the global situation, particularly in West Asia, is so volatile, so uncertain. I mean, if the Brent crude oil prices came down a bit, that is because Mr. Trump decided not to escalate his offensive against Iran. So as a result of which, Brent crude oil prices come down. So as long as these things will continue, I think the crude oil prices will keep going up and down. And for us, for the Indian economy, it is necessary, and it has already done that, diversifying its sources, diversifying its supplies. And so therefore, that's the way it will go on.
2: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,380 rupees per 10 grams, while silver was trading 2% down at 2,17,340 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi commodity exchange mein August anubandh wala sona 1% गिरकर 1,41,681 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.1% की गिरावट के साथ 2,16,420 रुपए पर थी. एकेबी, कमोडिटीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस इस समय का उनका चल रहा है, और जो भी जिस तरह की स्थिति है उनका कैसा असर उस पर?
0: देखिए, इस वक्त जो फेस्टिवल सीजन एक महीने बाद शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नरमी दिख रही है वो नरमी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी. डिमांड बढ़ने वाली है, और वो डिमांड जब फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि इनके जो येलो मेटल्स जो हैं, इनकी भी डिमांड बढ़ेगी और इनके दाम भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आएगी, इंक्रीज आएगी.
1: एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका

0: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद,
1: धन्यवाद, थैंक यू.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end marginally down. Sensex drops 70 points. Nifty settles at 23,985. India's industrial output grows by 7.3% in June this year. And most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%. And that's it in this edition of Market Mantra for now.
0: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जाँच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। भाजपा की बांसुरी स्वराज ने विधेयक को परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में अहम कदम बताया। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और अपुष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय

0: मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित एजेंसियों ने इस मामले की गहन जांच की है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर साझा किया जा रहा अधिकांश डेटा गोपनीय नहीं है। कुछ दस्तावेज वर्ष 2020 से 2022 के दौरान हुई पुराने डेटा लीक से जुड़े हैं। मंत्रालय के अनुसार कुछ लोगों ने पुराने दस्तावेजों में फेरबदल कर उन्हें नया और गोपनीय बताने की कोशिश की है। जांच में यह भी सामने आया कि ये दस्तावेज पुराने हैं, इनमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और इनका वर्तमान संचालन से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The Lok Sabha took up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment 2026 bill incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special task force fast courts for the court day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the new legislation reflects the government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP K.C. Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system. Several other members, including Basuri Swaraj, Tejaswi Surya of the BJP, Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi of Congress, Abhishek Banerjee of TMC, NCP, SP, MP Supriya Sule, Dr. Shrikant Shinde of Shiva Sena and Akhilesh Yadav and Dimple Yadav of Samajwadi Party took part in the debate. Other members, including BJP's Anurag Thakur and Shashank Mani, Congress MP K.C. Venugopal, S. Venkatesan of CPIM, Gurumurthy Maddila of YSRCP, RJD's Abhay Kumar Sinha, IUML MP E.T. Mohammed Bashir, JMM's Vijay Kumar Hanstak, CPI MP K. Subbarayan, JDS MP M. Mailesh Babu, AIMIM's Asaduddin Owaisi and Harsimrat Kaur Badal of the SAD were among those who participated in the discussion. However, the discussion remained inconclusive, Later, the presiding officer, Sandhya

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। नमस्कार जी। हाँ, दिन की हलचल थम चुकी है। देखिए कहीं आसमान की तरफ देखिए जरा, कहीं चांद रात को आसमान से झांक तो नहीं रहा। तारे खामोशी से अपनी कहानी तो नहीं कह रहे। हवाओं में घुली है एक मीठी सी खुशबू। जी हाँ, आइए कुछ लम्हों के लिए दुनिया की भागदौड़ को हम और आप यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपने दिल की धड़कनों को थाम कर पुरानी यादों, मोहब्बत के कहे अनकहे सिलसिलों और एहसासों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीत। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो तो याद बनकर धड़कन में बस जाते हैं, जैसे चांद का बदलना और मौसम का बदलना, लेकिन एहसास का ना बदलना, क्योंकि ये प्यार वाले एहसास कभी नहीं बदलते। किसी की मुस्कान, उसकी बातें, उसके साथ बिताए हुए पल दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। तो इस खामोश चांदनी से सजी रात में चलिए हम और आप सुनते हैं ये नगमा।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ बातें होठों तक आकर भी कहीं नहीं जाती, इसीलिए दिल उन अल्फाज को कहीं ना कहीं सहारा देता है अल्फाजों के माध्यम से, या फिर गीतों, गजलों या शायरी के माध्यम से। एक खत में सिर्फ स्याही नहीं होती, बल्कि उसमें होता है इंतज़ार, धड़कने, ढेर सारे अनकहे जज्बात लिखे होते हैं उसमें। और जब कोई रात ऐसी हो जहाँ पर चांदनी रात हो या खामोश रात हो, तब ऐसे में दिल के पन्ने जब हम पलटने लगते हैं तो हर लफ्ज़ मोहब्बत की खुशबू से महक उठता है। अगर आपने भी कभी किसी के लिए अपने दिल की बात खत में लिखी है तो ये नगमा ज़रूर आपके दिल को छू जाएगा। चलिए सुनते हैं ये गीत।

निशिगंधा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, मिला एक और नया सिलसिला कहानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को।

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया।

शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले। हम ही को मुड़ के न देखा, हम ही से कुछ न कहा, इस एहतियात से हम जिंदगी के साथ चले। तुम्हारे शहर में अनजान सा मुसाफिर था, तुम्हारे शहर में जिस आदमी के साथ चले, शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले।

थई थई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धा आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए।
1: इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

लिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की

आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ताइपे ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 66वें स्थान पर काबिज रौनक ने क्वालिफाइंग मुकाबलों में 2 जीतें दर्ज की। पहले मैच में उन्होंने कनाडा के जोशुआ गोयन को 21-15, 21-11 से हराया। इसके बाद रौनक ने ताइपे के कुओ कुआन लिन को 24-22, 21-10 से मात देकर BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 के अंकों से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है, अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, इस वक्त मुझे तुझसे सरोकार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है। पानी से उलझते हुए इंसान का ये शोर, उस पार भी होगा मगर इस पार बहुत है, अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है।

अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा, अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा, तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा। मैं जाता हूं दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। मैं जाता हूं दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। अगर यूं ही दिल ये सताता रहेगा, तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और बहुत ही खूबसूरत गीत और नगमे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगला जो गीत है दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत गीत है। कभी ना कभी दिल किसी एक ऐसे इंसान के करीब बहुत ज़्यादा होता है जिसके साथ रहकर जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। वो प्रेम है, सम्मान है, और वो एक ठंडक है जो हर गर्मी से राहत देती है। तो चलिए सुनते हैं दादी माँ फिल्म का ये गीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। तो आपको बता दें कि फिल्म है दादी माँ, आवाज़ें हैं मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब की।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कहते हैं कि दिल की सबसे सच्ची बातें अल्फाज नहीं, लफ्ज नहीं, आंखें कहती हैं। कभी एक नज़र जब मुस्कुरा उठती है तो कभी वही नज़र दिल के सभी राज भी पढ़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे आंखें आंखों की तलाशी ले रही है, हर धड़कन में एक ही नाम शायद ढूंढ रही है। तो अगर आपकी निगाहें भी किसी एक ऐसे चेहरे पर ठहर जाती हैं तो समझ लीजिए कि मोहब्बत खामोशी से आप पर अपना असर दिखा रही है। तो इश्क की सबसे खूबसूरत जुबान आंखें ही हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं आंखों की तलाशी पर एक ऐसा ही गीत। फिल्म है दिल और मोहब्बत, आवाज़ है महेंद्र कपूर साहब की।

फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, उससे दोबारा मुलाकात कहाँ से लाऊं। हर घड़ी जागता रहता है दुखों का सूरज, नींद आती है मगर रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ

कभी कभी किसी से शिकायत नहीं होती, दुनिया को कुछ बताना नहीं होता, सिर्फ दिल को एक पनाह चाहिए होती है। जहाँ शिकायतें नहीं होती, जहाँ सिर्फ अपनापन होता है, ऐसे एक रिश्ते की लोगों को दरकार होती है। जहाँ चांद अपनी चांदनी को खामोशी से अपनी बाहों में समेट लेता है, वैसे ही हर दिल ये चाहता है कि कोई अपना हो जो हमारे दिल की बातों को सुने, एहसास को छुपा ले। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत, फिल्म है ममता, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब सुरभि को दीजिए इजाज़त, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा तुरंत रोकने और घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। आयोग के अनुसार संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के दौरान हुई झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि रावलकोट में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरों से वो चिंतित है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उपायों की समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने विदेश मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और ओमान, सऊदी अरब, ईरान, रूस और यूक्रेन सहित कई देशों के भारतीय मिशन प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में वैश्विक समुद्री परिवहन मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा, आपात स्थिति में सहायता और तैयारियों की जानकारी दी गई। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें कीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों

में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की हरजिंदर कौर ने महिला 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम का भार उठाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए, कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए, तूफान ने बाहें फैला दी जिस वक्त किनारे याद आए। दीवार से लगकर सोचूं कि उम्मीद का सारा दिन गुजरा, जब रात हुई हमको भी सब ख्वाब हमारे याद आए, कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए। जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जब लोग चारों तरफ होते हैं लेकिन दिल फिर भी वीरान महसूस करता है। वो तन्हाई, वो बेचैनी और उन कहे अनकहे जज्बात को अगर कोई समझ सकता है तो शायद वो कोई अपना ही होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि उस दौरान कोई अपना साथ हो। तो ऐसे में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा गीत जिसने आपकी उस तन्हाई, बेचैनी और अनकहे जज्बातों को समेट लिया है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि उन दास्तानों से बढ़कर दास्तान है, वो एहसास है इसमें जिसमें घुलकर आप अपनी ज़िंदगी को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए सीधे ये धुन जो हमारे रूह तक उतर जाती है, सुनते हैं कुछ अधूरे ख्वाबों को, कुछ अनकही बातों को और कुछ मीठी यादों को याद करते हैं।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहते हैं कि मोहब्बत जब पहली बार दस्तक देती है ना, तो दिल को ना वो उम्र याद रहती है, ना दुनिया की कोई रस्म। बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उस पल को थोड़ा और जी लिया जाए। और जब दिल बेकाबू होने लगता है, तब प्यार से कई लफ्ज, कई बातें दिल से उठती हैं। तो आज एक ऐसा ही नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बड़ी ही मासूमियत से कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं, जिसमें मीठी बेताबी भी है और पहली मोहब्बत की वो कशिश, जिसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां किया गया है। और इस गीत को सुनते ही लोगों की जबान पर, होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। तो चलिए सुनते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, किसे मिलती है शोहरत जानता हूँ। तेरी यादें हैं, शब बेदारियाँ हैं, हैं आँखों को शिकायत।

वो आएगा दिल से दुआ तो करो, वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत से दिल आशना तो करो, मिलेगा कोई बन के उनवान भी, कहानी की तुम इब्तदा तो करो, तुम्हारे करम से है ये जिंदगानी, मैं बुझ जाऊंगा तुम हवा तो करो, हजारों मनाजिर निगाहों में है, रुकोगे कहाँ फैसला तो करो, वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत से दिल आशना तो करो।

और आज सुरमई में चलते चलते अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं, तो अब चलते चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति और मनहर और सुखविंदर की आवाज़ में।

इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। हरजिंदर कौर स्नैच में 101 और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम के साथ कुल 227 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

जब दिलों में सच्चा प्यार बस जाता है तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। मोहब्बत अपने भरोसे हर इम्तिहान को मुस्कुराकर पार कर लेती है।

सच्चा इश्क सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि दिल की सबसे खूबसूरत इबादत है। इसमें चाहत भी है, सम्मान भी है, और उम्र भर साथ निभाने का वादा भी।

जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब साथ कोई अपना हो। एक सच्चा हमसफर हर खुशी को दोगुना और हर कम को आधा कर देता है।

प्यार के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। किसी अपने की मुस्कान और साथ ही जीवन को हर पल जीने का नया कारण दे देता है प्यार। और जब प्यार जीवन में आ जाए तो जिंदगी उसके बिना अपने आप ही पूरी सी लगने लगती है।

कभी कभी किसी की एक झलक ही दिल की धड़कनों को नई रफ्तार दे देती है। लगता है जैसे रात की खामोशी में, लगता है जैसे रात की खामोशी में चांद खुद मुस्कुराने चला आया हो।

दिल की बातें शब्दों से कम, एहसासों से ज्यादा कही जाती हैं। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगे तो हर धड़कन एक मीठी दास्तान बन जाती है।

और समय भी कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप बने रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं जल्द वापस आऊंगी 4:10 पर लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए छोड़कर जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और

0: दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। भारत दुनिया में सीफेयरर्स यानी नाविकों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। BIMCO ICS सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक शिपिंग उद्योग को 3,11,936 समुद्री पेशेवर उपलब्ध कराए हैं। वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 12.16% हो गई है। इस सूची में फिलीपींस पहले स्थान पर है, जबकि भारत ने चीन, रूस और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। संगठन की दक्षिण एशिया की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लासी ने कहा कि रावलकोट में सुरक्षा बलों द्वारा कथित घातक बल प्रयोग की स्वतंत्र पुष्टि इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के बंद होने के कारण नहीं हो पा रही है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Lok Sabha took up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सहरा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार रामलाल, और गीतकार हसरत जयपुरी।

आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म बरसात की रात से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार आनंद।

अभी आपने गीत सुना खून भरी मांग से आशा भोसले और उनके साथियों की आवाज़ में संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार इंदिवर।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नई इमारत से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार बपी लहरी और गीतकार इंदिवर।

अभी आपने गीत सुना मन फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीतकार समीर, संगीतकार सजीव दर्शन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दीवाना से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। वहीं चर्चा में भाजपा के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया।

0: हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार अब तक नीट विरोध प्रदर्शन के संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ यह अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAC के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मुक्केबाजी में भारत के 3 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। प्रिया घंघास, प्रीति पवार और जादूमणि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत की पदक उम्मीदें कायम रखी हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries for the government at his residence yesterday. During the meeting, Prime Minister Modi reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. Highlighting the importance of citizen-centric governance, the Prime Minister said that the people of India must remain at the centre of governance. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill yesterday, Minister of State for Personnel, Public Grievances and

समय हो गया है 5:11 और 9 सेकेंड और ये समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1।

सत्य हमारे जीवन की शक्ति है, शिव कल्याण का मार्ग, और सुंदरता हमारे श्रेष्ठ कर्मों में बसती है। जब विचार सच्चे और कर्म पवित्र हों, तब जीवन स्वयं एक सुंदर गीत बन जाता है।

जिंदगी की असली बहार तब खिलती है जब हम अपनी मुस्कान, अपनापन और खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं। बांटी हुई खुशी कई गुना बढ़ जाती है और यही जीवन की सबसे सुंदर दौलत है।

जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद और मुस्कान जगाने में है।